0: कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन।

जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
2: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के दो दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
3: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरल में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
5: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
9: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। सुबह की पहली किरण चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और दिलों में एक नई उम्मीद, क्योंकि हर नई सुबह कहती है चलो आज फिर से कुछ करते हैं। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग शो, जहां सुबह सिर्फ शुरू नहीं होती है, थोड़ी मुस्कुराती है, थोड़ी गुनगुनाती है और ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आती है। और दोस्तों आज की बात करें तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत सा है। जी हाँ, ट्यूसडे मॉर्निंग है, मंगलवार का दिन है और एक बिंदास थॉट भी है आज की मॉर्निंग कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट तो जरूर होता है ना। बस नजर शिकायतों पर नहीं, मौकों पर रखिए, क्योंकि छोटी सी पॉजिटिव सोच भी पूरे दिन का मूड बदल सकती है। तो चलिए इसी थॉट के साथ बनाते हैं आपकी सुबह को बिंदास, थोड़ा सा म्यूजिकल और पूरी तरह पॉजिटिव। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप हैं मेरे साथ, तो सुबह हो जाए कुछ खास। क्यों दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने कामों में व्यस्त हैं, कुछ अभी स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तो कुछ मैम अभी किचन में ब्रेकफास्ट जल्दी से नाश्ता बना रही हैं, और हमारे कुछ लिसनर अभी नहा धो के मंदिर जा रहे हैं। राइट ना, ये मॉर्निंग टाइम होता है। और कुछ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। अभी मैं जब ऑफिस आ रही थी सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, और सुबह का वक्त ऐसे निकलता है ना कि बस पूछिए मत, पलक झपकते ही ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया। ऐसा होता है, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं एंड आपकी सुबह को बिंदास बनाने के लिए खुशी यहाँ पर आ गई है। तो उसे टेंशन ना लो, बस ऐसे ही मुस्कुराओ और हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उसको जल्दी से कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम में ना उसको स्लोली नहीं करना चाहिए, फास्टली करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाओ तो टाइम से पहले ही पहुँचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम भी बिना किसी देरी के सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, आपको भी सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, जब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एकजुट होकर साथ चलते हैं ना, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं और मंजिल भी थोड़ी करीब नजर आती है। और इसी खूबसूरत सफर में हम भी आपके साथी हैं, आपकी सुबह को संगीत, मुस्कान और अच्छी बातों से सजाने के लिए। बस यही कामना है कि आपका हर सफर, चाहे जिंदगी का हो, घर से ऑफिस का हो, या फिर सपनों की तरफ बढ़ता हुआ हो, खूबसूरत हो, यादगार हो और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए। और आप भी मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज पहुंचा दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना कि हमारे लिसनर जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कौन कहाँ से हमें सुन रहे हैं। और बताइएगा सुबह सुबह आज खुशी को सुनकर कैसा आपको लग रहा है। फटाफट से हमें मैसेज पहुंचाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और दोस्तों, अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास है आज, सब आपको बताएंगे हम। बस बने रहिए, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ। आपकी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए खुशी यहाँ पर है, तो बस मुस्कुराइए आप, ठीक है। और सुनिएगा एक शानदार सा ट्रैक।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों, कुछ तारीख सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो अपने साथ ऐसी कहानियां लेकर आती है जिन्हें वक्त भी भुला नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग शो। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं जी हाँ, आज 25 अगस्त का दिन है। और 25 अगस्त का दिन क्यों खास है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर दिन हर तारीख अपने आप में बहुत स्पेशल होती है।

दोस्तों 25 अगस्त है और इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये तारीख कई अहम घटनाओं की गवाह भी रही है। दोस्तों आज ही के दिन 1351 में फिरोज शाह तुगल द्वितीय की ताज पेशी हुई थी और आज ही के दिन 1916 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार का जन्म हुआ था। एंड बात करें आज ही के दिन 1957 को भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। 1988 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा दोबारा शुरू किया गया था। ०१ में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने। और दोस्तों 2003 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुए कार बम धमाकों ने पूरे देश को झंझोर दिया था। इसी घटना में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। और आज ही के दिन 2018 में भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी तेजेंद्र पाल सिंह तूर जी ने जगार्थ एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों 25 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों से जुड़ने का दिन है। और आपके यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको भी यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों आज की सुबह आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं जरा गुड मॉर्निंग तो विश कीजिएगा। हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें गुड मॉर्निंग का पहुंचाते हैं। ये मैसेज हमें मिला है गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग चमनलाल जी का। और सर सुबह सुबह अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं एंड जैसे ही 6 बजे सर शॉप पर आते हैं तो सबसे पहले सर रेडियो ऑन करते हैं, भजन चलते रहते हैं और ये अपनी दुकान को संवारने में लगे रहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, वेरी गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी। सुबह सुबह आप सबसे बातचीत करके मेरा दिन तो बहुत खूबसूरत हो गया है।

एंड हमारे पास यहाँ पर एक और मैसेज आया है, खुशी मैम हमारी दोनों बेटियाँ बहुत पसंद करती हैं इल्मा नूर एंड महेश्वरी नूर, ये मैसेज अपना मुरादाबाद से हमें पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने सुबह आपने मुझे पता है कि अच्छे से कर ली है, सारे काम आपने कर लिए हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बन गया है ना, बस अभी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हैं आप, चलिए आराम से कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज मैम एंड सर केयरफुली गाड़ी चलाइएगा। और हाँ, म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं ट्रैक प्ले करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग है, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे गुफ्तगू एंड अपनी मुरादाबाद का आज का वेदर कैसे रहने वाला है ये मैं आपको अभी आकर बताने वाली हूँ, ठीक है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट।

0: 120 plus rooms, spa and much more.
1: Book now 92582-53081 and for more details WhatsApp 92582-53081.
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज खुशी है आपके साथ, और देखिए स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ वक्त हुआ है 9:02। और देखिए बात करें अगर मुरादाबाद के मौसम के बारे में ना, तो आज का जो वेदर रहने वाला है मुरादाबाद का, अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी रहेगी लगभग 80%, और बारिश की संभावनाएं हैं 60% से, एंड गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं दोस्तों, अगर आप घर से बाहर जाएंगे ना, तो प्लीज मैं आपको याद दिला देती हूं, अपना रेनकोट अपने साथ रखिएगा और छाता भी लेकर जाइएगा, ठीक है। कभी आप सोचें कि अरे मौसम तो ठीक है, क्या करना है, लेकिन देखिए मानसून, आपको भी पता है कि मानसून चल रहा है और बारिश कभी भी हो सकती है, तो ये चीजें आपके साथ होनी जरूरी है, ठीक है।

दोस्तों, जिंदगी में ना एक बात हमेशा सीख कर रखिए कि जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हर मोड़ पर कोई हमारा हमसफर बने ये जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद पर भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा, और खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कभी सोच रहे हो कि कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरे साथ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो खुद को ही स्ट्रगल करना होगा, खुद को ही मेहनत करनी होगी, और अकेले ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए सुनते हैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक, मैं लौटकर वापस आने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाइएगा आज की मॉर्निंग, एंड मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। अभी लौटकर आऊंगी तो कुछ और अपडेट है जो आप तक शेयर करनी है। बस आप ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए आरजी कृषि को एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुस्कुराना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ओहो हो, आज बड़ी सोने लग रही हो तुसी, हाँ बार बार मिनर में खुद को ही दिखे जा रहे हो, नजर लग जाएगी, काला टीका लगा के रखो, ठीक है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, आप सभी सुन रहे हैं विनास मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। एंड यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं क्विकली उनको प्ले कर देती हूँ यहाँ पर। एंड हमारे पास एक बहुत ही स्वीट सा वॉइस नोट भी आया है, तो उसको भी सुन लेते हैं। एंड आज की मॉर्निंग हमारे जो लिसनर हैं वो क्या पहुंचाते हैं, जरा उनके दिल की बात भी जान लेते हैं हम। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अमित वर्मा जी का हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। और उसके अलावा एक और हमारे पास मैसेज आया है एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी।

0: और आज की सुबह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से लाइनें हमें भेजी हैं। आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छा सा है कि बहुत सुंदर होते हैं वो लोग, बहुत सुंदर होते हैं वो लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं, पर आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और साथ में एक और इन्होंने खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं जनाब, याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है जनाब, बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। क्या बात है सर, बहुत खूब। और हमारे पास एक और बड़ा प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है, तो मैं जल्दी से प्ले कर देती हूँ। आज की सुबह सर ने क्या पहुँचाया है।
1: नमस्कार राधे राधे, सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग, जिस समय बिंदास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिंदास बॉय लगे पड़े हैं अपने पिताश्री को ढूंढने के लिए, इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे उनके पिताश्री जल्द से जल्द उनको मिल जाएं, ताकि वे दोबारा रेडियो पर आकर इस प्रोग्राम को फिर से बिंदास बना सकें। प्रभु से यही इच्छा है, यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द उनकी मुराद पूरी हो जाए और उनके पिताश्री घर वापस लौट आएं और उनके परिवार में अच्छे से खुशियां दोबारा लौट सकें, और वो भी हम लोगों के जीवन में दोबारा लौट सकें, क्योंकि उनके ना होने से जितना दुख उनको अपने पिता के लिए हो रहा है, उतना ही दुख हमें उनके और उनके पिता के लिए हो रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उनके पिताजी को घर लेकर आएं और उनके परिवार को खुशियां प्रदान करें। राधे राधे, आज बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज ना कोई विचार है ना कोई संदेश। मैं भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागपड़ा से, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग्स साथ होती हैं और ईश्वर की कृपा है तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि देर भले ही लगती है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, और आशा उम्मीद जो होती है ना वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किलें राहों में आती हैं एंड जिंदगी में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानियां ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में कम है तो किसी की लाइफ में ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए, और लगातार जब हम उस मुश्किल का सामना करते हैं तो मुश्किल भी हार जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने आप पर, प्रभु पर कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हार नहीं माननी चाहिए। मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो भी होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपने इतना प्यारा सा वॉइस नोट पहुंचाया है और इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं। बस ऐसे ही दुआएं कीजिए कि जल्दी से सब कुछ लाइफ में फिर से ठीक हो जाए।

और यहाँ पर अगला मैसेज मेरे पास आया है, ये दुर्गी सनी जी का, एंड गुड मॉर्निंग, आज की सुबह हमें पहुँचाते हैं, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर विकी सागर जी का, और ये भी मैसेज पहुँचाते हैं हिमगिरी मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए आज की सुबह बनाते हैं आपकी और भी ज्यादा खूबसूरत, ठीक है, एक खूबसूरत गाने के साथ फिर लौट कर आती हूँ मैं। एंड आज की मॉर्निंग ना मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है, और मुझे ना पूरा यकीन है यहाँ पर कि आप उसका जवाब जल्दी से दे पाएंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए और फिलहाल सुनिएगा एक प्यारा सा गाना, मैं लौट कर आती हूँ वापस आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

बिल्कुल दोस्तों, हम आपके हैं और आप सब हमारे हैं। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी हैप्पी भाग जाएगी, सुहेल सैन एंड साथ में अल्तमश फरीदी जी की बहुत ही शानदार सी आवाज में प्यारा गाना आपने एंजॉय किया। और दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में अभी राइट नाउ टाइम हुआ है 9:38। जी हाँ दोस्तों, 9:38। और अब वक्त हो चला है एक मजेदार सवाल का, ठीक है? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल सा, इजी सा क्वेश्चन है। तो आपके लिए आज का सवाल ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में पैदा होती है लेकिन पानी में डालते ही खत्म हो जाती है? सोचिए सोचिए, जवाब बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा देखिए दिमाग को तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो श्रोताओं, आपका जवाब क्या है जल्दी से मुझे बताइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में पैदा होती है लेकिन पानी में ही डालते वो खत्म हो जाती है? जल्दी से अपने जवाब पहुंचाएगा, हम इंतजार है। और दोस्तों अब रक्षाबंधन बहुत नजदीक फेस्टिवल है, आने वाला है। श्रोताओं, रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है और इसी के साथ दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी फूड सेफ्टी को लेकर अलर्ट हो गया है। अकोला सब्जी मंडी में कार्रवाई करते हुए 508 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है एंड विभाग ने 22 सैंपल लिए जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो आप

0: मिठाई खरीदते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा, साफ सफाई वाली दुकान चुनिए, पैकेट वाले मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, और बहुत ज्यादा चमकदार या असामान्य रंग वाली मिठाइयों से बचिएगा। त्योहार खुशियों का है, इसीलिए मिठास के साथ सावधानी भी जरूरी है। अब हमने स्वीट की बात की है ना, तो एक मीठा सा गाना भी होना चाहिए ना आज की मॉर्निंग, तो सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे अभी।
1: ओ कुड़ियो गुड़

0: अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

मॉर्निंग माई डियर ऑल ब्यूटिफुल लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और आज की सुबह जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने। हाँ, इतने सारे आपके यू नो राइट आंसर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आज की मॉर्निंग आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर कहाँ से आया है और किसने भेजा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे आपसे, ठीक है? आप क्या चाहते हैं कि हम फटाक से बता दें? ना ना ना ना, थोड़ा तो इंतजार कराएंगे हम आपको। एंड यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया है अविनाश सतनागर जी का, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्यारा ब्लेसिंग्सफुल मैसेज भेजा है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।

और हमारे पास सही जवाब बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ना मैं आपको एक बहुत प्यारा प्यारा सा गाना सुना देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे जो आज के मॉर्निंग के लकी सुपरस्टार कौन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे ना आपको। तो बस ऐसे ही बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग शो।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आज ही खुशी के साथ। और आज 25 अगस्त को 1917 को पहली बार सात भारतीय सैनिकों को किंग्स कमीशन प्रदान किया गया था। ये भारतीय सेना के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे भारतीय सैनिकों के लिए सेना में उच्च पदों और नेतृत्व की ओर बढ़ने के लिए नए रास्ते खुलने लगे थे। यानी दोस्तों, आज ही का दिन सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीयों के सम्मान, अवसर और नेतृत्व की दिशा में बढ़े एक महत्वपूर्ण कदम की याद भी है।

और आपके यहाँ पर सही जवाब आ गए हैं। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा था और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज की मॉर्निंग ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा सा टिपिकल पूछना चाहिए था हाँ लेकिन हम कितना भी यू नो टिपिकल सवाल पूछें आप आंसर दे ही देते हैं क्योंकि आप सब इतने प्यारे इंटेलिजेंट हैं। आज की मॉर्निंग मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में पैदा होती है लेकिन पानी में डालते ही खत्म हो जाती है, और आप सभी के जवाबों ने तो कमाल ही कर दिया। एक बार आपके लिए जोरदार क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना। क्या बात है दोस्तों, आज की सुबह आपने कमाल कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचा है आज की मॉर्निंग। हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको बता देंगे, अब इंतजार नहीं करवाते, हम डायरेक्टली बता ही देते हैं।

आज के बनारस मॉर्निंग शो की लकी सुपरस्टार बनती हैं रिहाना जी। तो रिहाना जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाइयां आपको रिहाना जी। आपने सही जवाब दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने सही जवाब दिया है, बाकी और श्रोताओं ने भी जवाब दिए हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है महेश सिंह जी का मुरादाबाद से, आवास विकास से, एंड ये राइट आंसर के साथ जुड़ते हैं। सर ने सही जवाब दिया है नमक। और अगला मैसेज हमारे पास आया है दरक्षा फातिमा जी का, कहती है मैम राइट आंसर है नमक। एग्जैक्टली राइट। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, नमस्कार मैम, धर्मेंद्र कश्यप जी का ढका से, आपका सवाल है कि पानी से पैदा होती है, पानी में तो ये नमक है। ओके हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला मैसेज हमारे पास ममता जी का आया है, ममता झा जी का, सूर्य नगर लाइन पार से, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़ी है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर दुर्गेश जी का आया है, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, सोनू जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है लाइन पार मंझोला से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, एंड ये मैसेज हमें नाजिया सना पहुंचाती हैं। सही जवाब के साथ जुड़ी है आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास आया अमित वर्मा जी का, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से, सर कहते हैं कि खुशी जी नमस्कार, पहली तो आपकी बहुत अच्छी है। इसके जवाब कई सारे हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इसका एक ही जवाब है, नमक। हाँ जी सर। नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी ने भी सही जवाब हमें पहुंचाया है आज की मॉर्निंग, एंड कोमल शर्मा जी ने भी सही जवाब हमें पहुंचाया है आज की सुबह। थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इशरत हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसे हैं? बिंदास मॉर्निंग शो आपका सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप कार्यक्रम को पेश कर रही हैं, शुक्रिया आपका सर। राइट आंसर है नमक। एग्जैक्टली।

तो चलिए दोस्तों, आप सभी का वंस अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए आज की मॉर्निंग, आपने पार्टिसिपेट किया शो में। और आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयां जी, आपने सही जवाब दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। तो ये जोरदार तालियां आपके लिए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इतना प्यार देते हैं एफएम मुरादाबाद को और एफएम मुरादाबाद के सभी प्रेजेंटर्स को, अच्छा लगता है हमें। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमेशा लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए। और मैं क्या बोलूं शब्द कम पड़ जाते हैं जब बोलना शुरू करती है ना खुशी। कभी कभी तो इतनी सारी बातें होती हैं कि वो रुकने का नाम नहीं लेती और कभी कभी वो सोचती भी है कि मैं अब क्या कहूं। तो आज की मॉर्निंग बस इतना ही, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, सी यू सून, ठीक है। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। एंड नेक्स्ट शो प्रेजेंट करने वाली हैं रीना जी, तो आप उनके साथ एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए श्रोता। और समय की बात करूं तो 10:22 हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, यानी कि सुबह का मौसम है और भैया कभी धूप कभी बादल और ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कब बारिश आएगी। और एकदम जब बारिश आती है ना, पता नहीं चलता है एकदम, यानी कि जो गरजता है वो गरजने वाला उस टाइम नहीं बरसता है, काफी टाइम बाद बरसता है। यानी कि वो हमारे साथ ना लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। जब वो पकड़े जाते तो जमकर बरस जाते और इतना बरसते हैं कि गली भी, यानी कि गलियों में नाव तैरने हमें ऐसा मन करता है कि जैसे बचपन में नाव बना के तैराते थे, ऐसे तैरने का, यानी कि गलियां भी समंदर बन जाती हैं। और वही टेम्परेचर की बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बाहर का प्रीटी सन, यानी कि भैया प्रीति वाला तो नहीं है, गर्मी वाला धूप है। आने ना बहुत प्यारे प्यारे वो भी शामिल करना बहुत जरूरी श्रोता। और फिलहाल आप सभी से यही कहूंगी कि अपना मैसेज भेजिए, हमारा नंबर है 9837896889। साथ कनेक्ट हो गई हैं। चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आप सभी से, बहुत इंतजार कर लिया।
1: ले जा अपने अंगना,
0: गुड मॉर्निंग रीना मैम। यूपी से रामपुर से ये कनेक्ट होती है हमारे साथ, यानी कि सना नाजिया, एंड ये गाना सुनना चाहती है फतेह अली खान जी की आवाज में, एक से जान।

महसूस की बात करूं तो जय श्री राम। रीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। दुर्गे सैनिक कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं।

मुरादाबाद से राजा हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम आपको किसी भी गीत में शामिल कर लेंगे। फिलहाल तो आप सभी से यही कहेंगे कि आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप भेजिए और अपने पसंद का गाना एंजॉय करिए। चलिए, फिलहाल राहत फतेह अली की खान में राहत फतेह अली खान जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा इश्क़ जान वाला गाना सुनते हैं, उसके बाद अपने शो में आगे बढ़ते रहेंगे और ढेर सारा मजे करेंगे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। ये दोस्ती तेरे दम से है। और देखिए दोस्त वो नहीं होते जो आपको हमेशा बस आपके खुशियों में साथ दे, बल्कि दोस्त वो होते हैं जो खुशियों को ना देकर मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ दे। असली दोस्त तो वो कहलाता है। यानी कि उदित नारायण और सोनू निगम जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं, ये दोस्ती तेरे दम से है। और एक कानपुर का जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, यानी कि एक्सपायरी चॉकलेट्स चिप्स वगैरह यानी कि एक्सपायर हो गए तो उनको कूड़े में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि भैया यहाँ पे चॉकलेट चिप्स यानी कि फेंक रखे हैं, तो लोगों की इतनी लाइन लग गई, भीड़ इतना तेज जम गया कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे कि मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। लेकिन सोचिए, वही चीज अगर हम दुकान से खरीदते हैं, चाहे चॉकलेट हो कुछ भी हो, हम उस पर डेट चेक करते हैं, और जैसे भी पता चलता है कि डेट मतलब ये एक्सपायर हो चुका है, तो हम दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं, उसे सुनाने लग जाते हैं कि तुमने एक्सपायरी एक्सपायर हो चुका है, ये तुमने कैसे दिया, तुम क्या हमें बीमार करना चाहते हो। उसको 70 लेक्चर सुना कराते हैं, ऊपर से कहते फ्री जो हमारे पैसे वो फ्री में थोड़ी आते हैं, जो तुमने हमें फ्री में यानी कि एक्सपायरी ये चॉकलेट और चिप्स वगैरह दे दिए, तो देखा करो डेट सही है या नहीं है। लेकिन सोचिए, जब वही एक्सपायरी चीज यानी कि फेक दे, और फ्री का माल, चाहे एक्सपायरी हो चाहे जैसा भी हो, चाहे वो खराब हो सड़ा गड़ा सलेरा मलेरा क्यों ना हो, सब उठा कर ले आते हैं। लेकिन पैसे वेस्ट नहीं करेंगे एक्सपायरी डेट पर, चाहे वो फेंक दो कूड़े में, वो उठा कर ले आएंगे। तो भाई थोड़ा सा संभलना जरूरी है, जब आप वो चीजें खुद दुकान से नहीं ले पाते, वो कूड़े में फेंक दिया तो वो उठा रहे हो, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हमारी इंडिया में भैया ये चीज बहुत है, फ्री में मिले तो हर चीज ले लो भैया, ऐसा घर भर लो, लेकिन जब पैसे में मिले वही चीज तो नहीं नहीं नहीं पीछे हट जाते, गलत बात। सोचिए, जब आप वो खाएंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। कानपुर की ऐसी न्यूज बहुत वायरल हो रही है। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। रीना जी, जय श्री राम। गौरव टेलर नबीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हो और जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे गाना सुनना चाहते हैं सर की, जो सर की धीरे धीरे। लेकिन गौरव सर, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं जब भी मॉर्निंग मसाला शो में आती हूँ, आप यही गाना इस गाने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। अरे सर, कुछ और भी गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने, उनको भी देखिए, वो भी गाना भेजिए। एक ही गाना सुनते हैं, मतलब एक गाने सुन के आप बोर नहीं होते, बताइए मेरे को। आई नो कि ये गाना आपको बहुत पसंद है, लेकिन और भी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो भी भेजा करिए। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, जिद गुस्सा गलती लालच और अपनापन खराटों की तरह होती हैं, जो

और इनका कहना है जो दूसरों को तो चुभते ही है और खुद को भी एहसास। मेरे की तरफ चीखे आ रहे होंगे क्योंकि मुझे बार बार फेडर ऊपर करना पड़ रहा है गाना म्यूजिक प्ले करने के लिए। और खुद करे और खुद करे तो एहसास तक नहीं होता है। अच्छा, इनका कहना है ये गाना मुझे सुनना बहुत

अच्छा लगता है। ओके जी, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग, जनकपुर सहारनपुर से जॉन रोजेस पलवील जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र। ओके जी, रानी नांगल यानी कि रिहाना जी कनेक्ट हो गई हैं। कैसी हो? बहुत अच्छे जी, आप बताइए कैसे हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये दिल आशिकाना। और देखिए भैया, मौसम बदल रहा है, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए, जितना ध्यान रखेंगे उतना ही बहुत अच्छा होएगा। अदरवाइज भैया, एक बार जब बीमारियां घर करने लग जाती है ना, तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, इसीलिए ध्यान रखिए। और आप बाहर भीग जाते हैं तो कोशिश करिए कि जल्दी आप घर पहुंचकर यानी कि कपड़े चेंज करें। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

आशिकाना, हाय हाय क्या बात है जी। अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही और कुमार सानू की आवाज में बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है, ये दिल आशिकाना, यानी कि 90s सुपर हिट आपने गाना एंजॉय किया है। आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं मॉर्निंग मसाला शो में, और समय की बात करूं तो 10:53 हो चुके हैं, यानी कि 10:53 हो चुके हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई मार्केटों में अलग ही रौनक है, लेकिन साथ साथ मिठाई जो रसगुल्ला जिसको बोलते हैं छापे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छापे कैसे पड़ रहे हैं, कॉल भी सीटा माना होता है भैया। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, एक्चुअली क्या है ये गाजियाबाद का न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर यानी कि 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला, यानी कि गंदगी तरीके से, मतलब गंदगी में रखा गया था, वो जो साफ सफाई बिल्कुल भी वहां पर नहीं थी, यानी कि हाइजीन जिसको आप खाएंगे तुरंत बीमार पड़ेंगे। तो बहुत जगह छापे लग रहे हैं, तो जरा सोच समझ कर रसगुल्ले कोई भी ऐसी चीजें हैं जो सोच समझ कर खरीदिएगा, कि कुछ नहीं पता अंदर कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं बनाया जाता है। बस इतना ही इनफ है, बाकी आप सभी के मैसेज शामिल करते हैं। तो बाकी आप सब, भाई भैया बहुत स्मार्ट है आप सब, सच बताऊं, और स्मार्ट होना भी जरूरी है, अदरवाइज बीमार पड़ जाएंगे ना। त्योहारों पे ऐसी केसेस हमेशा आपने सुनने को देखा ही होगा कि भैया ये चीज लेने खाने से बीमारी बढ़ गई है, बीमार हो गए हैं। तो जरा चीजों को ध्यान रखिए और घर पर ही बेसन का लड्डू बनाइए और एक एक लड्डू खाइए और एंजॉय करिए। चलिए जी, मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हाय कैसी हो? बहुत अच्छे हैं जी। द्रक्षा फातिमा कनेक्ट होती हैं, गाना सुनना चाहती है मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा के लिए। बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो। ओके जी, चलिए अगले मैसेज की बात करते हैं। ये जुनाब जी कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, जिला मुरादाबाद ग्राम खेड़ा खाता से शमशाद अली जी कनेक्ट होते हैं, और गाने की फरमाइश है, दिल गया ले गया सनम, देखा तुझे नींद आती है। अच्छा जी, इनका कहना है कि हमारा पूरा मैसेज पढ़िएगा सर, इतनी बड़ी रामलीला। वैसे भी आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि आप रेडियो सुन भी पा रहे हैं, सिर्फ मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली इस शो में डेली नहीं आती हूँ, और हम कोशिश करते हैं कोई भी आए शो में मैसेज पूरे पढ़ने के लिए, लेकिन इतने बड़े चिट्ठे जो आप लिख के भेजते हैं, मतलब इतनी हमारी परमिशन भी नहीं होती है 1 मिनट से ज्यादा हम लिंक खुद बोले। आता है उनको भी हम प्ले करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि नेटवर्क इश्यू होने की वजह से आपकी वॉइस वो प्ले नहीं हो पा रही है, तो हम जरूर करेंगे आपका मैसेज। ठीक है जी। रीना जी नमस्कार, कैसी हैं आपके प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार होता है। ओ थैंक यू जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप, और आप उनके लिए आपको बहुत ही मतलब आप प्रोग्राम करती है उसके लिए आपको बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद, थैंक यू जी। और गाना सुनना चाहते हैं, तेरी है जमीन तेरा है आसमां, क्या बात है जी, हम आपको एक गाना जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आपका नाम कितने भैया, नाम बहुत

कृपा करके अपना नाम भी बताया करे जी। नंबर है 9974। के बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 10:57।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 11:07 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्टेड। और टेम्परेचर की बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बाहर भाई प्रीति धूप किसको बोलते हैं वो तो आप ही मुझे मैसेज करके बता सकते हो, है ना। और हमारा नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। ज्यादा कष्ट नहीं लेना है आपने, बस आराम से आप मैसेज करके बता सकते हो। फिलहाल एक वॉइस मैसेज है, उनको सुन लेते
1: गुड
0: हैं।
1: मॉर्निंग, कैसे हो दी? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है, नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है। हवाओं ने भी आज खुशियों की खुशबू सजाई है। मुस्कुराकर शुरू करो आज का दिन, मुस्कुराकर शुरू करो आज का दिन, क्योंकि जिंदगी ने एक और खूबसूरत सुबह दिखाई है। दी, मुझे एक सॉन्ग सुनना है। तू थोड़ी देर और ठहर जा जालमा, साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी बेस्टी लाइबा, मेरी सिस्टर नजमा, दरक्सा, राबिया, रुकैया और आसिया, रामपुर से हैं सबनम भी। और दी, सभी दोस्तों से कहना चाहती हूँ, रेडियो बजाते रहें, गुनगुनाते रहें। मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा।
0: चलिए जी, बहुत ही मधुर आवाज में अपनी वॉइस भेजी है, लेकिन भाई साहब शायरी कहाँ कहाँ से लेकर आती हो आप, ये बताओ जरा। भाई जिनका दिल टूटा होगा ना, उसको अभी सांस भी लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी शायरियां भेज देते हो आप। दिल पर छुरियां चला देती हो, थोड़ा सा चुटकुले टाइप में बोला करो आप, ताकि लोग सुनकर खुश हो जाए। अदरवाइज भैया पता चले जिनके दिल पर तो पहले छुरियां लगी पड़ी है, वो और छुरियां चल जाएगी उनके दिल पर। बाकी अच्छा शायरी था आपका। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। भैया किनका और क्या मैसेज? बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, आप सबको हमारी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती, और गीत सुनना चाहती है साजन मेरा उस पार है, उसको इस पार बुला लीजिए जी, बहुत अच्छा ही रहेगा। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि रीना मैम, जब भी आप मॉर्निंग मसाला शो में आती हो, प्रोग्राम में चार चांद नहीं बल्कि 8 चांद लग जाते हैं। सर मैंने 4 भी नहीं देखे, 8 भी नहीं देखे, आप मुझे 10 चांद दिखाइए पहले तो। और ये देव सनम मूवी से गाना सुनना चाहते हैं सोनू निगम की आवाज में, तू नहीं तो तेरी याद सही। अरे सर, जो गया जिंदगी से गया, अब उसकी बातों में लेकर क्या अपनी जिंदगी, मतलब आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में जरूर। अब जो चला जाता है अब सोचिए उसके बारे में, सोचते सोचते खुद का समय बर्बाद करेंगे, खुद के दिमाग खराब करेंगे, दिमागों पर टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो इंसान लौट कर नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। इसीलिए बेटर है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और कुछ अलग करिए, कुछ अच्छा करिए, क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और अलग सोच रखा हो, है। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान चला जाता है, आई नो कि दुख होता है, वो दुख तभी होता है जब अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है, उस अटैचमेंट को कम करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। बहुत ही घातक वाला आपने ये गाना सुनना चाह रहे हैं ना भाई साहब, रो देगा इंसान कोई बाहर सुनेगा तो। चलिए फिलहाल हम नहीं रुलाएंगे, आपको बहुत ही प्यारा गाना सुनवाते हैं, उसके बाद लौटेंगे।

0: तो थोड़ी देर।
1: जी हम तो है ही आपके साथ कनेक्ट हैं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं तो 11:18 हो चुके हैं और आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट है। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रेया घोषाल जी की आवाज में, तू थोड़ी देर और ठहर जा। हाफ गर्लफ्रेंड से आपने गाना एंजॉय किया है, फ्रॉम मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड। अगर आपने मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है जी बिल्कुल। और अब अपने शो में श्रोताओं आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, यानी कि मिठाइयों से लेकर हर चीज। अब भैया ये कहा जा रहा है कि चीनी के साथ साथ चाय पत्ती भी महंगी कर दी गई है। देख लीजिए अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना वो थोड़ा सा महंगा हो गया है, यानी कि बजट सोच समझ कर देखना पड़ेगा, पॉकेट मनी को देखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि सुबह का ही ब्रेकफास्ट ही भैया महंगा होता जा रहा है बताइए। और ये कहा जाता है सुबह यानी कि भरपेट खाना खाना चाहिए, चाहे आप बाद में हल्का फुल्का खाओ, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है वो भर पेट खाना चाहिए। ओके जी, अगर आप नहीं खाते तो खा लीजिए। बहुत से ऐसे होते भैया जब तक पूजा नहीं करेंगे पानी नहीं पिएंगे, कसम खा के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सेहत खराब होती है तभी भी तो हम चाय बिस्किट जल्दी खा लेते हैं ना, इसीलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज की तारीख यानी कि 25 अगस्त है और कल 26 कि छुट्टियां हैं बच्चों की स्कूल की, है ना जी, तो आप इंजॉय करिए और शॉपिंग वॉपिंग करिए जी। अगर शॉपिंग हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो मेरे नाल चलो जी, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे शॉपिंग। चलिए जी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो रीना जी, आपकी बहुत याद आती है, जल्दी आ जाए करो शो पर। लेकिन सर आपने अपना नाम नहीं बताया, कौन है आप जो हमारी याद इतनी आपको आती है। इनके नंबर है 8142। अगले मैसेज की बात करूं तो भैया ये मैसेज आते हैं हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली बाबू अंसारी, मेराज अंसारी, रीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? मॉर्निंग मसाला शो सुन रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश कर रही हूं। और एक गाना सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनाएंगे जी, मोहम्मद रफी की आवाज में इनको गाना सुनना है दिल।

गई, पकड़ के लाई है, दिल को नहीं जाने देना है बिल्कुल भी अपने पास से। गुड मॉर्निंग रीना जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हो सके तो मेरी फरमाइश का एक गाना सुना दीजिएगा। साफ सीधी बात है सर, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को, सच बताओ इमोशनल कर देते हैं। पहले तो आप बोलते अच्छा शो कर रहे हैं, फिर बोलते हो सके तो गाना सुना दीजिएगा। बिल्कुल गाना सुनाएंगे, और ये गाना सुनना चाहते हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, डेली कॉल करा करिए, मैसेज करा करिए, बात कर लिया करिए, अच्छी बात है। फिर तो ये मुस्कान मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं। रखो आप सभी के गाने हम जरूर प्ले करेंगे। रीना सिस्टर जी नमस्कार, राधे राधे, नमस्कार राधे राधे जी, अजीत कसाना जी, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर

0: help me. Please help me.
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं,

0: जी आज भैया क्या शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं।
1: जो बात हो तेरे
0: आशिकी 2 मूवी से आप ये गाना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। और आरजे रीना के साथ मॉर्निंग मसाला शो में आप कनेक्ट के समय की बात करूं तो 11:32 हो चुके हैं। और आइए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, इनका क्या मैसेज आते हैं हमारे पास। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, इनके दोस्त है दीपक जी। रीना जी हमें एक गाना सुनना है। कैसे पिया से मैं कहूँ, क्या बात है जी। लता जी की आवाज में गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना मैम नमस्कार। नमस्कार जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, यारो मैंने पंगा ले लिया। लेकिन मैम आपका ये गाना ठीक है, लेकिन ये गाना हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है, तो कोई और गाना बताइए। मैं आपका वो जो गाना है डेफिनेटली उस गाने को मैं प्ले करूंगी।

0: और आगे बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ कि वो क्या कहना चाहती हैं इनकी इनकी
1: मुस्कुरा।
0: हेलो गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सैनी अग्रवाल जी कश्मीर से कनेक्ट होते हैं।
1: गुनगुनाने
0: आज एक बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल जी, हम बर्थडे सॉन्ग प्ले करेंगे। इनका कहना है कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। इनके दोस्त का नाम है कृष्णा और उसकी बर्थडे के लिए गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली बर्थडे वाला हम एक गाना जरूर प्ले करेंगे सर आपके लिए। गुड मॉर्निंग सीमा जी कनेक्ट, सीमा अंसारी जी कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल हम आपको ये गाना सुनवाएंगे जी। चलिए श्रोता और लता, पहले एक और गाना सुनते हैं उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। तेरे आराम। और अभी आपके पास समय है, आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आप गाना सुन सकते हैं मैसेज करके। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करना है। और ये कहा जा रहा भैया बाहर का जो वेदर है वो बादलों वाला वेदर हो गया, यानी कि बारिश किसी टाइम भी आ सकती है। तो बस अगर आपने कपड़े सुखाए हो तो उतार लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा जरूर जब बारिश आए तो, ठीक है।

0: हूँ यहाँ पर, लेकिन दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया। श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अपने
1: सन्नी अग्रवाल जी के रिक्वेस्ट पर ये गाना था जो कि कांसीराम से कनेक्ट हुए थे श्रोताओं। और इनके दोस्त का बर्थडे है आज, कृष्णा नाम है उनका, मेरे भाई का भी कृष्णा नाम है। तो हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे जी, और आपका दोस्त हमेशा यूं ही खुश रहे अपने जिंदगी में, जो ख्वाहिश करते हैं वो जरूर पूरी होए। और अगले मैसेज की बात करूं तो गुड वाली मॉर्निंग है जी पहले आप सभी को, क्योंकि समय की बात करूं तो 11:48 हो चुके हैं। मॉर्निंग मसाला शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और मैसेज आता है गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है। रीना नेहा कनेक्ट होती है फ्रॉम मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहती है, क्या मौसम आया है, काले बादल वाले मौसम आए हैं। सो हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे जी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, इंतजार करते रहिए क्योंकि आपका गाना जरूर प्ले होएगा। कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं देखते ही देखते। एंड आरजे आपकी आवाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, थैंक यू सो मच। अरे रणवीर सर जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनम्र विनती करना चाहेंगे कि आप दूसरा गाना बताइए, हम जरूर आपका गाना प्ले करेंगे। आई नो कि आप हमारा रेडियो 336 बार सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लगाव बहुत अच्छी बात होती है सर, लेकिन ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए बस। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, हम मिलेंगे शाम 5 बजे इवनिंग मस्ती शो में, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिहतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा। कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सिहतिया जी?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है, अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सके।
0: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
1: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
0: लेकिन सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
1: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है, यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद

0: सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LHBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी न किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सकें।
1: सीहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
0: देखिए आरजे खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उनकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: क्या बात है सीहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सीहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, सेहत सही
1: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
1: आज किसान ज्ञान वार्ता के इस एपिसोड में किसान साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच कृषि से जुड़े विविध मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए हमने आमंत्रित किया है चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अनिल कुमार संघी को। सर आपका हार्दिक स्वागत है।

0: दुकानें हैं वहां पर आज के समय में PMKSK लिखा हुआ है या उस तरह के कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि खेती अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष का एक मुख्य काम है। लगभग 60-70% लोग खेती ऊपर आश्रित है। हमारा खाद्यान्न, अधिकांश खाद्यान्न है वो खेती से ही आता है, और खेती में जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं वो इन खाद की दुकान के द्वारा जाते हैं, तो वहां से लोग खाद ले जाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो भारत सरकार ने सोचा और उन्होंने उर्वरक मंत्रालय को आदेश दिया कि जितनी भी उर्वरक की ये दुकानें हैं उनको हम इस तरह से जो चैनलाइज करें कि वहां पर जो किसानों को खेती से संबंधित सेवाएं भी मिले, क्योंकि जो उत्पाद ले रहे हैं अगर वहां से सेवाएं भी मिलेंगी तो जो उत्पाद उन्होंने लिए हैं उनका अच्छा उपयोग हो सकेगा। अगर सपोज कोई किसान यूरिया लेके जा रहा है या कोई DAP लेके जा रहा है, ले तो गया वो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में अगर उसे जानकारी नहीं है तो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। अब भारत जो उर्वरक मंत्रालय उसकी ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि जितनी भी उर्वरक की दुकान है वहां से उर्वरक की या जो भी खेती में जो इस्तेमाल होने वाले आदान है उन जो उनकी बिक्री तो होगी ही, लेकिन साथ के साथ उनके उपयोग की सलाह और क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी जो किसानों को दी जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई वो उत्पाद खरीदे, या तो वो पहले से लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, कोई शंका है उनको, लगता है कि इसके बारे में और जानकारी ली जाए कि इसका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो सके, तो जो भी दुकान से आप उर्वरक ले रहे हैं उनसे जानकारी आप लें, और अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछिए कि कौन हमें सही ढंग से जानकारी दे सकता है। उसमें जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है आपके यहाँ पर, बहुत से ऐसे फोन नंबर होते हैं जो आपके सलाह के एक तरह से जो फोन नंबर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं उनके नंबर होते हैं, जैसे कि हमारी चंबल फर्टिलाइजर है उसका भी एक फोन नंबर है हेलो उत्तम का, तो वहां आप फोन लगाएंगे, वो हर दुकान पे वो नंबर लिखा हुआ है, तो वो जो वहां पर जो हमारे एक्सपर्ट है वो फोन उठाएंगे और आपका जो सवाल होगा उसका वो सही उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आप लेके जा रहे हैं उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, खेती से संबंधित कोई और भी आप सलाह चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं कोई नई खेती करना चाहता हूं, या आपको लगता है कि मेरे यहाँ कोई और इस तरह की समस्या आ रही है उसका मुझे समाधान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो वो जो वैज्ञानिक है वो उसमें मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारा एक जो उत्तम का ऐप भी आता है उससे भी आपको सलाह जाती है। तो मतलब कहने का ये, चंबल फर्टिलाइजर नहीं अन्य उर्वरक कंपनियां भी इस तरह की सेवाएं देती हैं। तो PMKS के अब सिर्फ उर्वरक विक्रय या खेती जो आपके खेती के आदान है उनके जो विक्रय केंद्र ही नहीं है, वो सलाह केंद्र है, सेवा केंद्र है, और वहां पे आपको जानकारी मिलेगी, साहित्य मिलेगा, और मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि आप अवश्य वहां जाकर पूछा करें। आप पूछेंगे तो अगर उनके पास वो सुविधा नहीं है तो उसको वो एकत्रित करेंगे, कंपनियों से मांगेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेंगे, और वो सेवाएं आपको उपलब्ध अवश्य कराएंगे। तो PMKSK के बारे में मैंने ये कुछ जानकारियां आपको दी। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप इसे लाभान्वित होंगे और आगे जब भी किसी दुकान पर जाएं तो इन सेवाओं का लाभ अवश्य लें।
1: सर, इसका मतलब यह है कि सरकार इन केंद्रों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में,
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने सही जो कहा कि सिंगल स्टॉप सेंटर है और जहां खेती की सभी आपको सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध होंगे।
1: सर, इस समय वैसे तो धान की खेती हमारे तरफ जो है वो जोर शोर पे चल रही है
0: जी,
1: लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है या मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है वहाँ पर लोग अक्सर मूंगफली की खेती करते हैं
0: जी जी।
1: तो सर, मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएं।
0: हाँ, मूंगफली की खेती के बारे में मैं जो अवश्य जानकारी दूंगा क्योंकि आज का विषय ही यही है। इससे पहले जो किसान भाइयों, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि जो उर्वरक का उपयोग है उसमें कहीं न कहीं प्रासंगिकता नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी तरफ से हो जाता है, यह सोच के कि हम उर्वरक का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें लाभ होगा। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये नहीं कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई उतना ही डालिए जितना आवश्यक है। जैसा कि जो हर फसल की मांग अलग अलग होती है, जैसे कि मान के चले हमारी भूख चार रोटी की और अगर हम सात खाए भी लेंगे तो हमें शायद बहुत तकलीफ भी हो जाएगी और उसका जो सही मायने में उससे जो पोषक तत्व नहीं मिलने चाहिए

0: जो जो आने चाहिए थे वो हम अच्छे तरीके से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसी तरह उर्वरक के बारे में कि एक निश्चित मात्रा में ही फसल जो पोषक तत्वों को लेती है, अगर ज़्यादा उर्वरक आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, फसल के काम नहीं आएंगे। तो उससे क्या नुकसान होगा, एक तो क्या है आर्थिक नुकसान हुआ आपने जो अधिक इस्तेमाल किया, दूसरा उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं जो फसल इस्तेमाल नहीं कर पाई वो पानी में मिलेंगे जमीन में मिलेंगे, तो वो जो रासायनिक अवयव है वो हमारे खेती के पर्यावरण को खराब करेंगे। जो जो जो अपनी खेत की मिट्टी है उसका जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होंगे। तो इसी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संबोधन दिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो अवश्य किसानों को सुनाए, तो वो संबोधन आप अवश्य सुनाइए।
1: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: सर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है उर्वरकों का अधिक उपयोग
0: जी,
2: जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और फसल की स्वास्थ्य के लिए
0: बिल्कुल। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने यही कहने की जो जो कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इसको समझ के और उसी हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करेंगे।
2: सर अब मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा बताएं।
0: हाँ जी हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि मूंगफली की फसल आपके क्षेत्र में होती है लेकिन उतनी सघनता से नहीं होती, और मेरा मानना भी यही है कि जो लगभग कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में उतनी सघनता से मूंगफली की खेती नहीं होती। हाँ, लेकिन जो खेत उपयुक्त है जहाँ सिंचाई के साधन शुरू में है, शुरू में मतलब जब आपका खरीफ का आरंभ होता है, बहुत सी जगह जायद में भी लगाते हैं, वहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है। मूंगफली अगर आप देखें तो एक ऐसी फसल है जो कि हमारे जो हमारा खान पान है उसमें शामिल है, और ये एक तरह से स्नैक्स के रूप में भी है, भोजन के रूप में भी, अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा इसके अंदर तेल की मात्रा होती है, मूंगफली का तेल अगर कच्ची घानी से निकाल के खाया जाए जो कि ट्रेडिशनली खाया जाता था, तो वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। मूंगफली की फसल अगर हम देखें तो इसका जो बीज है वो मिट्टी के अंदर लगता है, मिट्टी के अंदर लगता है, तो इसके लिए खेत की तैयारी ये खास तौर से की जानी चाहिए, और उर्वरकों की या जो जो जो इसके अंदर पोषक तत्व है उनकी सही मात्रा उस जमीन के अंदर होना बहुत आवश्यक है। और ये ऐसे समय पर होती है जबकि शायद और कोई फसल हम नहीं ले रहे होते हैं, सरफेस पे होने वाली फसल है, तो इसलिए मूंगफली की खेती जब भी अगर आपको मौका मिलता है, आपका ऐसा कोई खेत है जहाँ पर आप ले सकते हैं मूंगफली, और इसको आप मेड़ पे भी लगा सकते हैं, समतल जमीन पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आप एकदम जो है आप अपने सपाट खेत पे भी लगा सकते हैं, तो इससे क्या है कि अतिरिक्त आमदनी के बहुत सारे साधन आपको खुलते हैं। जैसे कि कभी आप जैसे धान लगा रहे हैं, धान के बाद फिर मुझे लगता है कि आप गेहूं लगाएंगे, ऐसा ही है ना, और गेहूं के बाद खेत खाली है, तो उस बीच में अगर पानी की व्यवस्था है तो आप बहुत सी वैरायटियां ऐसी उपलब्ध है जो कि जायद में भी मूंगफली की होती है, तो वो धान से पहले मूंगफली आपको प्राप्त हो जाएगी, तो एक अतिरिक्त आमदनी का एक साधन हो जाता है। मूंगफली आपने अपने उपयोग के लिए की है वो तो आपके अपने लिए होगी, अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में तो आप उसका विक्रय कर सकते हैं। मैंने जैसे देखा है आपके यहाँ सड़क किनारे लोग रखे हैं और वो भून के लोगों को देंगे, तो ये एक आम आदमी का काजू है
2: जी।
0: हम कहे तो वो आराम से लेके 100 ग्राम उसने लिया और धीरे धीरे चबाते हुए अपना, और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ऐसा भी कहा जाता है साउथ में तो कि मूंगफली को अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के थोड़ा एक कप दूध पी लें तो वो एक संपूर्ण आहार के रूप में हो जाता है
2: जी।
0: तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी फसल है, और मैं अनुरोध यही करूंगा कि जब भी अगर आपको मौका मिले और अवसर है तो आप अवश्य मूंगफली की खेती करें।
2: सर, मूंगफली की हमारी फसल अच्छी हो
0: जी,
2: तो उससे अधिक उपज ली जा सके, उसकी गुणवत्ता बेहतर हो
0: जी,
2: इसके लिए पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए फसल?
0: जी हाँ जी हाँ, पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप लगाने जा रहे हैं उस समय आप खेत में ये देखिए कि कौन कौन से जो है उर्वरकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला जो उर्वरक है वो है फास्फोरस। फास्फोरस हमें अनेक अनेक जो उर्वरक उत्पाद है, जो मतलब आपका पोषण है फास्फोरस है, वो अनेक उर्वरकों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि NPK है जो अलग अलग आते हैं, DAP है ठीक है, और इसके अलावा जो सुपर फास्फेट है जो कि सिंगल सुपर फास्फेट भी है, ट्रिपल सुपर फास्फेट भी है, इन सब से हमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। तो हम जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पर फास्फोरस के उर्वरकों को जरूर दें। दूसरा एक होता है कि इसमें प्रोटीन बनता है और जो तेल की मात्रा भी बनती है, तो अगर सल्फर का कोई उत्पाद आपके पास उपलब्ध है तो उसे भी आप खेत की तैयारी की समय पर दें। यूरिया की मात्रा ज्यादा न दें, यूरिया बहुत सीमित मात्रा में दें, क्योंकि जब मूंगफली की फसल करीब करीब 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस पौधे के अंदर स्वयं इतनी क्षमता आ जाती है कि वो खुद हवा से यूरिया लेकर उसकी पोषण की पूर्ति कर लेता है। अब वो हवा से यूरिया कैसे लेता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि जब आप देखें कहीं पर भी आपने मूंगफली लगाई हो, 30 दिन की करीब करीब हो जाए तो उसको उखाड़ के देखें तो उसमें आपको छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, तो कंफ्यूज ना हो कि वो मूंगफली की गांठें हैं। वो एक तरह से ऐसी गांठें होती हैं जिनके अंदर खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है जो हमें यूरिया से मिलती है या NPK खादों में भी होती है, वो हवा से उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उससे वो पौधा अपने लिए पोषण की पूर्ति कर लेता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा न दे, फास्फोरस दे, सल्फर दे, ये पोषक तत्व शुरू में दे दे, और उससे पहले अगर सपोज कोई जैविक जो है आपके पास व्यवस्था है जैसे कि कंपोस्ट खाद है, गोबर का खाद है, तो वो आप दे सकते हैं। उससे जो जो हवा का आवागमन है वो अच्छा होता है, जमीन में पानी रोकने की क्षमता है उसमें विकास होता है। तो ये जब सारी स्थितियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी मूंगफली फसल को जो जो शुरुआती तौर पर जो है उसको पर्यावरण और जो पोषण की आवश्यकता होती है वो मिल जाता है।
2: सर, हमारे किसान भाइयों को जरा बताएं, जिस तरह आपने बताया कि मूंगफली की फसल वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके
0: जी
2: और मिट्टी को बेहतर बना सकती है, स्वयं के लिए भी पोषण जनरेट करती
0: जी, जी,
2: है
0: जी,
2: तो ये कुछ अरहर की फसल के जैसे?
0: हाँ बिल्कुल, अरहर भी है, चना भी है, उड़द भी है, मूंग भी है, जितनी भी ऐसी फसलें जिनके बीज की दो दाल हो जाती है
2: जी।
0: जैसे ढेचा है, ढेचा में भी हो जाता है, सनई में भी हो जाता है, जिसकी दो दाल हो जाए अपने आप सहायक तौर पे, उनके जो भी जो उनसे जो आपका पौधा उगता है उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। तो ये आपका उत्तर रहा। दूसरा मित्र ये है कि अब बात ये आती है कि मूंगफली में ये तो शुरुआती पोषण हमने दिया, खड़ी फसल में भी कभी कभी लगता है कि भाई कुछ ऐसा कर दे जिससे कि और पोषण मिले हमारा उत्पादन, कभी फसल हल्की लगती है तो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। करीबन 350 ग्राम जिंक और 160 ग्राम आप चूना ले लें, 100 लीटर पानी में घोल लें और ये एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, ये आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और स्वाद अच्छा होगा। दूसरा आप देखें कि एक हमारा उत्पाद आता है उत्तम आरिस गोल्ड, इसकी 500 ml मात्रा ले लें और इसको भी पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं, ऐसी अवस्था पे जब पौधे की पूरी ऊपर से शाखाएं पत्तियां अच्छी तरह से बन गई हो, क्योंकि जो भी हम स्प्रे करते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, खेत के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसका पोषण करके मूंगफली से अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये जो पोषण के बारे में जानकारी रही। आपका अगला सवाल,
2: सर मूंगफली की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया?
0: हाँ जी हाँ जी, खरपतवार का नियंत्रण अगर हम देखें तो इसमें क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वाली फसल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम आगे चलकर इसका वो करें, लेकिन फसल जैसे हमने लगाई है और 20 से 30 दिन के अंदर हम खरपतवारों को रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि हम जो गुड़ाई करें जो खुरपी की सहायता से, अगर बहुत छोटा एरिया है जैसे कि कोई किसान ने आधा एकड़ लगाई है या एक बीघा लगाई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रासायनिक की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुरपी के द्वारा भी अगर आपके पास श्रम उपलब्ध है तो कर सकते हैं। बाकी रासायनिक नियंत्रण आपने करना है तो उसके लिए एक दवा आती है उत्तम एटलस है 175 ml ले लें, या एक दूसरी एक दवा आती है जिसका नाम है उत्तम फ्लूजी वो 400 ml, इनमें से कोई एक दवा ले लें 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें तो ये जो खरपतवार हैं जो मूंगफली के अंदर वो नष्ट हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें इसके साथ कोई भी पोषक तत्व न मिलाए, क्योंकि एक तरफ तो आप पौधे को मार रहे हैं और उसके साथ पोषक तत्व भी दे रहे हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा सावधानी ये रखें कि जब स्प्रे करें तो पत्तियां सूखी हो, उनके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, पानी होता है तो ये जो कंसंट्रेशन है इनका ज़्यादा असर नहीं हो पाता। तीसरा ये है कि जब आपने छिड़काव किया है तो कम से कम 8-10 घंटे तक बारिश ना हो तो बेहतर है। इस तरह से खरपतवारों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये जो भोजन आपने फसल के लिए दिया है वो ये खा जाते हैं तो फसल कमज़ोर हो जाती है, तो जो एक उत्पादन आप चाह रहे हैं वो उतना बढ़िया से नहीं मिल पाता है, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। उसे
2: सर खरीफ का मौसम जो है बारिश का मौसम होता है
0: जी जी,
2: तो अक्सर इसमें कीटों की भरमार हो जाती है
0: जी जी,
2: तो मूंगफली की फसल में कीटों की रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें?
0: बहुत बढ़िया, देखिए बहुत से इसमें जो होते हैं, एक तो होता है कि जो इल्ली होती है जो उसकी ऊपर की पत्तियां होती है उनको खाता है, और दूसरा एक जो तंबाकू के ऊपर एक जो कीड़ा आता है ना जो ऐसे चलता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। ये दो तरह के होते हैं, इल्ली थोड़ी छोटी जो छोटी होती है, कैटरपिलर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनके लिए एक कीटनाशक है उत्तम प्योटा, ये 60 ml आप लें, 200 से आप 300 लीटर पानी में घोल के, पानी की मात्रा इसलिए अच्छी तरह से आपको अधिक बताई जा रही है कि पौधे का कोई हिस्सा ऐसा छूटे नहीं जहाँ तक कि वो दवा न पहुँचे, और आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते वक्त ये जरूर देख लें कि कीड़े की संख्या, अगर कोई आपने पूरे खेत में चक्कर लगाया और एक आधी दिख रहा है तो कोई उतना प्रभाव उसका नहीं होगा, जब ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है तो उनको रोकने की ज़रूरत है और समय पर आप छिड़काव करें। दूसरा जो तंबाकू की जो है लट, उसके लिए एक उत्तम योवोटा के नाम से आता है, इसकी भी करीब करीब 60 ml मात्रा है, 200 से 300 लीटर पानी में लेकर इसका आप छिड़काव करें। तो इस तरह से हम कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं और जो है मतलब जो हानि होनी है फसल को वो रोक सकते हैं। जो कीड़े हैं वो लगे हैं या नहीं लगे ये कैसे पता पड़ेगा? अंदाजे से तो नहीं लगेगा, तो इसलिए खेत के चक्कर जरूर लगाते रहें, हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के खेत में जाएं, जरूर देखें कि हमारी फसल की क्या स्थिति है और कोई जो नुकसान तो नहीं हो रहा है, अगर कुछ इस तरह का नुकसान है तो उसके लिए आप प्रबंध करें तो फसल हमारी ठीक हो जाएगी।
2: इसी बहाने खेत भी घूम लेंगे और टहलना भी हो जाएगा,
0: टहलना हो जाता है। और मैं तो एक चीज ये कहूंगा कि आप जितना खेत के पास जाते हैं या टहलते हैं तो खेत पहचानने लगता है आपको, फसल पहचानने लगती है, बड़ा अजीब सा लगता है पर ऐसा नहीं है, पहचानती है। आप कभी देखिए कि आप जहाँ जो अपने घर में रोज रह रहे हैं वहाँ आपको बड़ा सहजता लगती है, है? आपको अच्छा सा लगता है, सहज होता है सब कुछ। आप वहां से कहीं दूसरी जगह जाएं जहां पहले कभी नहीं रुके और वहां आप रुकिए, आप बहुत देर तक असहज रहेंगे वहां। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो पर्यावरण है वो आपके लिए आपके शरीर के एडजस्ट नहीं हो पाया। इसी तरह से जो खेत है हमारे या जहाँ फसल हो रही है वो एक तरह से जीवंत है, हमें तो लगता है चलो हैसियत से काट देते हैं तो ये क्या जीवंत है, ऐसा नहीं है, पर वो जीवंत जगह है, वहां पर एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको पहचानने लगती है तो फिर उससे आपको संकेत भी मिलते हैं। संकेत इन द सेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नए विचार आपको आ सकते हैं। और तो ये सारी चीजों के लिए हमें खेत के पास जाना जरूर चाहिए। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि धान लगा हुआ है, लगा दिया, यूरिया डाल दिया, बस उसके बाद वो देखें काटने कब जाना है, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन कुछ भी नहीं करना, फिर भी जाइए, देखिए, मिलिए, हालचाल पूछिए, तो आपको कोई ना कोई वहां से उत्तर और जवाब जरूर मिलेगा। तो जाना चाहिए
2: के साथ। हाँ, डेवलप करें।
0: हाँ बिल्कुल, तालमेल हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
2: सर, अलग अलग तरह की फसलों में अलग अलग तरह के रोग भी हो जाते हैं, तो मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके क्या उपाय हैं? हाँ। रोकथाम कैसे किया जाए, ये हमारे किसान।
0: देखिए, मूंगफली की फसल या हो या कोई फसल हो, रोग न लगे उसका उपाय बहुत शुरुआत में किया जाता है। उसके लिए बीज का उपचार है, तो बीज का उपचार जरूर करें। बीज के उपचार के लिए बड़ी सामान्य सी चीज होती है, कुछ दवाएं आती है, जैसे M45 है, मैनजीम है, जिनको हम फफूंद नाशी बोल देते हैं। रोग फैलता है फफूंद से, उसके छोटे छोटे जीव वो जो अणु होते हैं वो जो बीज के ऊपर होते हैं, और जब वो जाते हैं खेत में और फसल उगती है तो फिर उनके एक जब सही समय आता है तो उनका विकास होके वो रोग का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीज से रोग का अंश हमें हटाना है, तो फफूंद नाशक से बीज लगाने से पहले उसका उपचार हम जरूर करें। बहुत थोड़ी सी दवा लगती है, बहुत थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बीज उपचार करें, लेकिन उसके बाद भी अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसके ऊपर जो भी जो फफूंद नाशक है या जो दवा है उसका स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि रोग से जो पौधा नष्ट हो गया उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग आगे और न बढ़े उसकी रोकथाम तो की जा सकती है। तो उसके लिए ये दवाएं हैं, जैसे कि अगर मूंगफली में आप उखाड़ के देखते हैं पौधा सूख रहा है तो उसकी जो जड़ है उसमें गलन है, तो उसके लिए आप कोई दवा है, एक जो उत्तम मैनजिम है, 200 ग्राम दवा ले लें, 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से आप जो छिड़काव करें नीचे की तरफ करें, जहां पर उसका रूट सिस्टम है, जहां पर उसकी जड़ें हैं, वो अंदर तक जाएगा और उसको ठीक करेगा। फिर एक आता है जो इसकी हरी पत्तियां उन पर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, उसको धब्बा रोग बोलते हैं, उसके लिए भी यही दवा है मैनजिम करके। तो जब आप जो नीचे की तरफ स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर भी कर दीजिए इसी मैनजिम का, तो वो उसके लिए, चाहे वो रोग है या नहीं है तो भी वो एक लाभदायक होगा। फिर इसके अलावा एक गेरुआ रंग जैसा आ जाता है, उसके लिए एक दवाई VRM 45 350 ग्राम एक एकड़ के लिए है, और इसके लिए भी लगभग 300 लीटर पानी आप ले लें और इसका आप स्प्रे कर दें। तो ये जो दवाएं, ये फफूंद नाशक है, सामान्य फफूंद नाशक है, तो इनका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा धब्बा रोग, रस्ट रोग, टिक्का रोग, ये बहुत ज़्यादा अगर संक्रमण इसका ज़्यादा है तो फाल जो आपके फल कॉक्स जो नाम की एक दवा आती है, ये भी 350 ग्राम दवा है और 250 लीटर पानी में घोल के आप इसका एक एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा एक और छोटा सा उपाय है जो किया जा सकता है कि जहाँ पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं जिनमें आपको लगता है रोग आने की संभावना रहती है या ज़्यादा संक्रमण होता है, तो उसके आसपास उसके आकार से ऊंची फसल कोई लगा दे आसपास खेत में। जैसे कि आपने एक एकड़ मूंगफली लगाई है तो उसकी जो मेड़ है उसके पास चार चार पाँच पाँच कूड़ जो आप चारों तरफ ऐसे मक्का के लगा दें, बाजरा के लगा दें, ज्वार के लगा दें, तो उससे क्या होता है कि अगर एक बार दवा का स्प्रे करने के बाद जो रोग के जो वो है वो एक तरह से ख़त्म हो गए, लेकिन अगर वो उड़ के कहीं दूसरी जगह से आ जाएंगे तो फिर वो उसको संक्रमित कर सकते हैं, तो वो उसको रोकने का काम करेगी बाढ़। और जब आप मुख्य फसल पे स्प्रे करें तो आसपास जो वो और आपके पेड़ हैं उन पे भी कर सकते हैं, जो मेड़ है उन पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीड़े उड़ के वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, बहुत सारे रोग के जो अंश हैं वो भी वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही उनको उचित अवसर मिलता है तो वो आके फिर फसल पे, क्योंकि उनके लिए वो भोजन है, पोषण है, और वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारी वृद्धि हो सके, वंश वृद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम के बीच में कहीं ना कहीं आप अगर एक रुकावट ला देंगे तो फसल हमारी ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी।
2: सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी
0: जी।
2: प्रधानमंत्री किसान दी के PMKS के योजना के बारे में बताया और वर्कों के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सामने रखा
0: जी।
2: मूंगफली की फसल

0: संबंधित प्रबंधन जो है किया सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो है इससे बड़े लाभान्वित होंगे। इसका जरूर आपकी सलाह और आपके द्वारा सुझाए गए उपायों का लाभ ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा एक बार फिर नमस्कार।
2: आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
2: कुछ नया है
1: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
2: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल
1: जी
2: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
1: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
1: जी।
3: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
1: जिसका नाम है सोच बदलो।
3: जिसका नाम है सोच बदलो।
1: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
4: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
1: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
2: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
1: करेक्ट?
2: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं?
1: करेक्ट।
2: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
1: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
2: चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
1: एडवाइस कर रहे
2: हैं, कि तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
3: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के साथ सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
1: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चाकू के बारे में?
4: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
2: आज से नहीं, मतलब जब से मेरी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग
1: अच्छे भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरों के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
1: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
1: रीना,
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
0: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
1: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गांवों की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, ढाकन सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने ये बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने बताया कि अटैच टीम की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नए तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम दो तीन में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो भेजा वो भी सब बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज दिखाया। तो वो कागज मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसमें फिर मशीन पड़ी। तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा। मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है, जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
0: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आई जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी, ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया, वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे, बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे, जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया। उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अब हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
0: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर, श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएँ हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत, इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे, वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है, जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास यदि उनकी खुद की जमीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया, जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है रूरल जो हमारी इकॉनमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पे, उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा है कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गे स्व सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक गृहिणी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक गृहिणी से हटके एक उद्यमशील एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं ऑफिसर्स अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गांव में हैं वहां पे भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके योजनाओं के पात्रता उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाते हैं?
4: देखिए अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं न कहीं वो एक कमजोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पे उनकी जांच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पे जाके जो टैगिंग होती है फिर उसको देखी फ़ोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पर है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से और सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसी तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिलाधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे।

0: किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे उसके प्रभाव में मत है। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पर भी सुनवाई होती है, तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किसी अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहे।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ भी लेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हूं उसको, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बातों से साफ है कि विकास सिर्फ निर्माण कार्यों का नाम नहीं है, विकास का मतलब है लोगों के जीवन में सुविधा, अवसर और आत्मविश्वास बढ़ना।
3: और यही दूरदर्शी सोच आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है, जहां आज की योजनाओं की नींव पर कल के आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश की तस्वीर तैयार की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
3: गांव में सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिले, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।
2: यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तेजी से बदलती विकास की तस्वीर से भी हो रही है।
3: तो दोस्तों आज की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तब तक सार्थक होता है जब तक उसका असर जमीन पर दिखाई दे
2: और जब उस बदलाव की गवाही खुद आम आदमी की आवाज दे।
3: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
2: और इसी विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और नए उत्तर प्रदेश के रास्ते पर।
3: तो श्रोताओं इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
2: सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो वक्ति की आवाज 91.2 FM पर, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
2: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
5: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447

0: दोपहर समाचार। नमस्कार, नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में
1: नमस्कार,
2: नमस्कार, दोपहर
3: मिलावटी माफियाओं कौन सी शक्तियां वर्द

0: श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
6: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
1: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती है। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
1: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती है। क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है?
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझना, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं
0: और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कुछ रिश्ते आवाज से बनते हैं, कुछ रिश्ते आवाज से बनते हैं, कुछ बातों से दिल में उतर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते फिर भी हर पल महसूस करते हैं, राइट ना? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, हाँ जी, आपका फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ। हेलो फरमाइश। और हमारे साथ हमारे खूबसूरत सी लिस्टर भी कनेक्ट हो गई हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 3:03। 25 अगस्त की तारीख है आज और दिन है मंगलवार का, ट्यूसडे। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रही हैं
1: आप?
0: मुरादाबाद से बात कर रही हूँ जी। मैम बताइएगा, क्या करती हैं आप?
1: ऐसे घर का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, घर का काम करते हैं आप। ओके, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है मैम, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम दोबारा।
0: अच्छा, ये गलियां, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, राइट? ओके, चलिए सुनवा देते हैं आपको मैम ये प्यारा सा गाना, ठीक है? तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं मैम की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और फिर करेंगे आपसे भी बातचीत। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ बिना किसी देरी के। नंबर हमारा है 9837896896, इसी नंबर है, जल्दी लग जाएगा, आप ट्राई तो करो।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत ही प्यारा से ट्रैक अभी आपने सुना एंड लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग जो 1982 में आई थी और इस खूबसूरत से गीत में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और लिरिक्स थे संतोष आनंद जी की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जिला रामपुर तहसील स्वार से जावेद अंसारी बात कर रहा हूँ मैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस मैम बढ़िया है, आप सुनाए, आप कैसे, आपकी तरफ का मौसम कैसा है?
0: हमारी साइड का मौसम बहुत ही औसम है, आप बताइएगा आपकी साइड कैसा वेदर है?
1: बस इधर भी बहुत काले काले घटाए हैं, खाई भी और बूंदाबांदी हो रही है धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर पहले हुई थी बहुत तेज बारिश।
0: ओके तो बताइएगा सर आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम बरसात फिल्म का गाना सुना देना, तेरी अदाओं पे मरता हूँ।
0: ओके
1: तुझे लव करता हूँ।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और इस खूबसूरत से गीत को गाया है कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। तो इंजॉय कर दें मिलकर सभी ब्यूटीफुल ट्रैक।
2: अगर कोई मुझसे ये पूछे
0: क्या
2: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों
2: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक। फ्रॉम द मूवी बरसात जो 1995 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू ना खपा सही पर ये तो देख, कोई टूट सा गया है तेरे रूठ जाने से। मैडम जी नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला करेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप बताएं आप लोग कैसे हैं?
0: जी सर, आपकी दुआएं हैं, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड?
1: मौसम मैम इस समय बारिश हो रही है बहुत तेज वाली।
0: अच्छा, तेज बारिश हो रही है
1: जी इस समय? बहुत बारिश हो रही है और इतना बहुत फुर्सत के पल में बैठे हैं और आपका ये शो सुन रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे काम धामों पे ब्रेक लग जाता है, वही की रास्ता रह जाता है आकाशवाणी मुरादाबाद सुनने का इस समय। और अक्सर जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ बरेली में तो ये इसी समय ज्यादा होती है।
0: ओके, तो बताइएगा।
1: मैं ये कह रहा हूँ या तो सुबह रात को होती है या इस समय होती है, सुबह में बता सकते मौसम ठीक रहता है। और उम्मीद ये करता हूँ अभी इस कॉल से पहले भी जो सब कह रहे थे बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जोरों से बारिश हो।
0: ओके, तो बताइएगा सर आप कौन से गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: ये गाना सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा, उसका एक गाना है तुम याद न आया करो। लेकिन इससे पहले चार महीने में आपको जरूर सुनाना चाहूंगा।
0: जी सर सुनाइए।
1: वो खुद नहीं जानते वो कितने प्यारे हैं, वो खुद नहीं जानते वो कितने प्यारे हैं, जान है हमारी हमें जान से प्यारे हैं, दूरियां होने से क्या फर्क पड़ता है, वो तब भी हमारे थे वो भी हमारे।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत थी लाइनें हैं सर आपकी।
1: शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि कॉल लगेगा तो हम ये सुनाएंगे?
1: जी मैं क्योंकि मुझे शायरी पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे पास बहुत सारे मलाशार मौजूद है, क्योंकि अपने भी लिखता हूँ और कुछ करता भी हूँ, तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा शो में कॉल लगेगा तो एक दो शेर सुनाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उम्मीद के श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। जी तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का ही प्यारा सा ट्रैक, तुम याद ना आया करो। देखिए हम तो याद भी आते हैं और आपसे मुलाकात करने भी आ जाते हैं। अब आपकी बारी है, जल्दी से आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। नंबर हमारा रहेगा 9837896896।

0: थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक शबीर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हमें गाना सुनना था, ये राजा ये दुनिया ये मेरा काम।
0: जी अपना नाम तो बता दीजिएगा सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम राजेंद्र सिंह है।
0: राजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? जी मुरादाबाद पीतल नगरी से।
0: ओके, तो ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं, ठीक है सर?
1: जी
0: तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। और तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका भी कॉल लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 98 378 96 896। जल्दी से कॉल लगाइए।

0: दोस्तों, अभी सुना आपने बहुत ही प्यारा से गाना मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन जी और मूवी का नाम था ही डांजा, जो 1970 में आई थी। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम पूछ रहा था, बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोलो। मैंने चुराया तो गोविंद तो खुद है
0: जी। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं। और बारिश हो रही है मैम सुबह से ही?
0: सुबह से बारिश हो रही है आपकी साइड?
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: ओके, तो तेज बारिश हो रही है या हल्की बारिश हो रही है सर?
1: अब तो हल्की है, अच्छी बारिश हुई थी।
0: अच्छा ओके, अभी हल्की है, बूंदाबांदी हो रही है ना अभी?
1: जी जी, अब बूंदाबांदी है ना, तो अभी बारिश हुई थी
0: जी। बताइएगा सर, बताइए आज क्या सुनेंगे आप?
1: गाना अच्छा लगेगा, बूंदाबांदी ना, वो बरसात के दिन आए।
0: ओके, बरसात के दिन चल ही रहे हैं सर, मानसून चल रहा है, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर नहीं मालूम है आपको? चलो मैं बताती हूँ आपको, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी।

0: सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना बरसात मूवी का एक प्यारा सा ट्रैक, कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका?
1: एमपी विदिशा से बात करता हूँ मैम, आपका मिस होता।
0: ओके, हमारे रेगुलर लिसनर हैं आप। शिवा बताएगा कैसा मौसम है एमपी का?
1: मैडम मौसम तो अच्छा है, बारिश हो रही है रुक रुक के और मौसम सुहाना बना हुआ।
0: ओके, सुहाना मौसम है तो बताएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम मूवी का नाम है आज का अर्जुन, उसमें गाना रहेगा बहना हो मेरी बहना तेरा क्या कहना।
0: ओके, राखी स्पेशल ट्रैक सुनना चाहते हैं आप?
1: Yes.
0: चलिए सुनवा देते हैं आपको,
1: आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे परिवार को आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
1: ओके,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए विवान सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। और बहनें जो होती है ना बड़ी नटखट होती हैं एंड बहुत प्यार भी करती है भाइयों से और उनकी खिंचाई भी बहुत करती है। नहीं एक्चुअली भाई ज्यादा खिंचाई करते हैं, है ना, बहनें इतना नहीं करती हैं। भाई ज्यादा ही नटखट होते हैं, बहनें थोड़ा सा रूठती हैं लेकिन वो मान भी जाती हैं। और भाई भी बहुत स्वीट होते हैं, देखो दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा होता है ना। तो भाई भी मना लेते हैं बहनों को, और कभी कभी जैसे भाई नाराज होते हैं तो बहनें भी मना लेती हैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:51 और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद अजीज साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज फ्रॉम द मूवी आज का अर्जुन। और जब इस तरह के गाने सुनते हैं ना तो एक अलग ही अच्छा महसूस होता है ना, अपनी पुरानी सी यादों में हम फिर से चले जाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रईस अहमद है, मैं लालू वाले से बोल रहा हूँ। मैडम
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है
0: जी, ठीक ही रहना चाहिए। हम भी ठीक है। बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैं आज एक सॉन्ग सुनवा दीजिए, अल्लाह करम करना, मौला करम करना।
0: ओके, दादा फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं?
1: दादा फिल्म का ट्रैक।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। तो चलिए विवर सुन लेते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी कॉल लगाते रहे।

0: दोस्तों देखिए ना, समय कितनी जल्दी से मतलब आगे बढ़ता रहता है ना। लग नहीं रहा है कि एक घंटा कैसे कंप्लीट होने वाला है। और मेरे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, बहुत देर से हेलो हेलो बोल रहे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शंकरलाल यादव है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, बताइए?
1: मैं राउंड लाइन पार्क प्रकाश में गली नंबर 2 से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: हम तो बहुत सही हैं, आप बताइए आप कैसी हैं सर?
0: जी मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं अंजाना फिल्म का गाना सर सुनना चाहता हूँ
0: जी।
1: आता है एक दिन साल में मेरा भैया।
0: ओके।
1: एक दिन साल में चले आना रे हाल में।
0: अच्छा सर, ये बताइएगा आप अपनी बहन के घर जाते हैं या आपकी सिस्टर आपके घर आती हैं?
1: हम जाते हैं, आप जाते हैं?
0: अच्छा, आप जाते हैं अपने सिस्टर के घर?
1: जी जी जी।
0: ओके, तो बेसब्री से इंतजार है, क्या लेकर जाएंगे इस बार अपनी बहन के घर आप?
1: जी
0: मैंने कहा इस बार आप जाएंगे राखी पर अपनी बहन के घर, तो क्या लेकर जाएंगे?
1: सब हम तो सब पैसे दे के चले आते हैं।
0: अच्छा, पैसे देते हैं आप? ओके, चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत सर, नमस्कार।
1: हमारे लड़के हमारी पोती कह रही है कि हमारी बात करवा देना, तो आपको फिर किसी दिन बात करवाऊंगा।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करवाइएगा सर नेक्स्ट टाइम। जी तो ये प्यारा सा गीत आप इंजॉय कीजिएगा अपने परिवार के साथ। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगी एवरीवन कि आप भी मुझे कॉल लगाइए जल्दी से बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अनजाना, जो 1969 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, आई एम गुड। बताइएगा अपना नाम।
1: जी मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं इंगरी कॉलोनी मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर।
1: रेगुलर श्रोता हूँ एफएम मुरादाबाद का।
0: यस, वो तो हम जानते हैं।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: मोस्ट वेलकम सर, बताइएगा।
1: गाने की फरमाइश है, गाने का बोल है कहना एक दीवाना उसकी याद में आहे भरता है। मूवी का नाम है लाला मजनू।
0: ओके, और ये ट्रैक किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: ये ट्रैक मैं अपने वाइफ के साथ सुनना चाहता हूँ, मेरे साथी हैं।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और समय हम आपको बता देते हैं, वक्त हुआ है 4:14। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी अगर आपने रेडियो ऑन किया है और आप सोच रहे हैं कि हम भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम भी कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन नंबर नहीं मालूम है, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि ये नंबर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस नंबर पर जल्दी से कॉल लगाइए और अपना फेवरेट गाना सुनते जाइए। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: ठीक है ना? आप सुनाइए, आपको क्या हाल है?
0: हाँ जी बहुत ही अच्छे हैं हम तो। बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है सर?
1: मौसम क्या है, हल्की हल्की बारिश कर रही है।
0: हल्की हल्की बारिश हो रही है। ओके तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप, इतना सुहाना सा मौसम है।
1: मैम ये जो आप ट्यून जब जाती है बैकग्राउंड में, ये चेंज नहीं हो सकती, एक ही ट्यून बजती रहती है।
0: ओके आप चाहते हैं कि चेंज हो?
1: नहीं चेंज हो थोड़ा।
0: ठीक है सर, श्योर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है आप बताइए कौन से गाना सुनेंगे आप?
1: गाना बजा दीजिए
0: जी। बताइए
1: जी, कोई गाय बजा दीजिए।
0: ओके ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर मैं आती हूँ वापस। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और जल्दी से मुझे कॉल लगाइएगा।

0: विजिट करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी. एंड शो का नाम तो आपको मालूम ही है, हेलो फरमाइश. ये लाइव फुलनी कैरेक्टर में होता है. आप एवरी डे शो को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ कॉल सिर्फ एक ही बार आप वीक में कर सकते हैं. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम.
0: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मुरादाबाद यूपी से रणबीर सिंह जेठालाल.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया मैम, और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, पानी पड़ रहा
0: है. अच्छा बारिश हो रही है?
1: हाँ खूब तेज बारिश हो रही है मैम.
0: ओके बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: बेटा फिल्म का गाना है मैम.
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: अपने दिल को जला दे रोशनी की.
0: ओके
1: मैंने तुमसे दोस्ती की.
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कहिएगा.
1: किसी को चाह कर खो देना आसान नहीं होता.
0: वाह वाह वाह.
1: किसी को चाह कर खो देना आसान नहीं होता, दिल का दर्द शब्दों में बयां नहीं होता. जो सच में बस जाते हैं दिल में, जो सच में बस जाते हैं दिल में, उनसे दूर रहना मैम कभी आसान नहीं होता.
0: बिल्कुल राइट, सही बोला है आपने. और बहुत प्यारी सी शायरी है आपकी सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको. ठीक है
1: जी,
0: नमस्कार. आपको भी नमस्कार. तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप ही कॉल लगाइएगा.

0: दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक शब्बीर कुमार लता मंगेशकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। यस सर, क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, कैसे हैं आपके परिवार में सब? और आप?
1: बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास।
0: जी, फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। बताइए सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: क्या ख्याल आता है आपके दिल में?
1: अमिताभ बच्चन का सॉन्ग है।
0: ओके, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आप?
1: धन्यवाद।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिमाग होने के बावजूद भी ख्याल दिल में क्यों आता है। और चलो ये गाना सुनते हैं, इसके बाद आपसे फिर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है।
2: तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों पर कभी।

कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, बाहर का जो मौसम है ना, बड़ा ही सुहाना हो रहा है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और शाम का समय भी है। 4:46 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में। एंड अब मन कर रहा है ना कि गर्मा गर्म जल्दी से अदरक वाली चाय बनाई जाए या फिर कोई हमारे लिए बनाकर लेकर आए, है ना। देखिए, अगर कोई बनाकर लेकर आ रहा है आपके लिए चाय तो अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं बना रहा है आपके लिए चाय तो आप खुद बना लीजिएगा। कभी कभी खुद से भी कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? वेरी गुड इवनिंग, नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम है मोहम्मद निजाम
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं रामपुर से, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा, क्या करते हैं सर?
1: मैं कार मैकेनिक का वर्कशॉप चलाता हूँ।
0: ओके, रामपुर में ही?
1: जी जी।
0: ओके, तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ मैम।
0: यस, बताइए।
1: काली काली जुल्फों के फंदे में डाला।
0: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको, ठीक है?
1: ओके
0: जी, आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 3 98।

0: हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी सुना आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक काबुल बुखारी जी की, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज भी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है संबल से छोटे अंसारी का कोल है। और आपको ईद उल नबी की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।
0: जी सेम टू यू सर।
1: और सभी प्रोग्राम सुनने वालों को बधाई। और हम और भी अच्छे हो गए, हमारी कोल लग गई एफएम मुरादाबाद में।
0: जी अपना नाम तो आपने बताया नहीं है, इतनी सारी बातें आपने बता दी हैं।
1: छोटे अंसारी बताया सर जी पहले मैंने।
0: ओके जी बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: हम आज हम मतलब सुनेंगे श्रोतागढ़ ध्यान दे एफएम मुरादाबाद पर गीत चलने वाला है एक छतरी और हम है दो भीग न दो भीग न दो आवाज मोहम्मद रफी।
0: सर बहुत जल्दी आप आरजे भी बन जाएंगे
1: छोटे अंसारी।
0: ओके सर थैंक यू, आपने हमें कॉल किया, सुनवाते हैं प्यारे से गीत आपको।
1: धन्यवाद दीदी,
0: मोस्ट वेलकम सर।
1: ओके
0: हाँ जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। और इसी गीत के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस प्यारे से गाने का आनंद लेते रहिए। देखिए छतरी ले जाना बिल्कुल भी बाहर मत भूलिएगा। पता चला कि आप सोच रहे हो बादल ही तो आ रहे हैं, बारिश थोड़ी ना होगी, लेकिन कुछ नहीं पता है, देखिए मानसून स्टार्ट है ना, तो बारिश हो सकती है। इसीलिए केयरफुली बाहर जाइए सेफ्टी के साथ।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक

0: 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाएंगे। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। कली जट्टा मूवी से पंजाबी मूवी है, यानी कि मेरे सामने खड़ा रहवे माई, मैंनु कुछ और नहीं चाहिदा। देखिए, हम जिससे भी प्यार करते हैं और जिससे भी ज्यादा लगाव हो जाता है ना, बस उस इंसान से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे वो हमारे सामने हो, भले ही बोले ना कुछ, भले ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे सामने ही रहे, हमारे आंखों से एक सेकंड के लिए भी ओझल ना हो, इस गाने का ये मतलब है। और ये गाना और मूवी भी, सच बताऊं, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो एक बार रीना के कहने से मूवी जरूर देखिएगा। कली जट्टा मूवी है, पंजाबी मूवी है, सरताज यानी कि सत्येंद्र सरताज जी की मूवी है, बहुत ही खूबसूरत। गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:14 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में, यानी कि आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं आप सभी। 2 घंटे के लिए हम ढेर सारी बातें करेंगे। और बाहर यानी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम यानी कि बहुत ही औसम है। और देखिये भैया, बाहर अगर आप निकले हो घर से तो सुबह के टाइम, जब भी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि मॉनसून का महीना है, बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाए कब ना आ जाए, यानी कि कहते हैं ना मौसम दगाबाज होता है, तो मौसम सच में दगाबाज है, कब बारिश आ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। और जो आप बाहर जा रहे तो छतरी रेनकोट कोशिश करें कि आप अपने साथ रखिए, ऐसा ना हो कि आपको इंतजार करना पड़ जाए। अगर आपके पास सोचिए छतरी हो तो आप आराम से ऑटो रिक्शा तक या फिर अपनी बाइक गाड़ी तक आराम से पहुंच तो सकते हैं, वरना वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाहर जाए तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ बरसात के मौसम में बाइक की जो स्पीड है वो थोड़ा कम रखिए, और खासकर स्कूटी के जो पहिए होते हैं ना, स्लिप बहुत ज्यादा खाती है। और बरसात के मौसम में थोड़ा वेव में कम चलाइए, जो स्टैंड मारते हैं, स्टंट मत मारिए स्टम बरसात के मौसम में, क्योंकि स्कूटी का जो पहिया होता है एकदम स्लिप खा जाता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता, बाइक भी। और साथ ही साथ अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी है, छींटे नहीं मारने किसी के ऊपर। सोचिए जो बेचारे पैदल चल रहा हो, ऊपर से तो वैसे ही वो गीला हो रहा है, और एक आपके छींटे लगे उसके और कपड़े खराब हो जाए, और जो व्हाइट पहन के जाए बात ही कुछ और है। इसीलिए हर चीज का ध्यान रखिए। और फिलहाल लोकल से लेकर यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और कल की तारीख यानी 26 अगस्त है, और 26 अगस्त को आखिरकार क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेते हैं हम क्या लेते हैं जी, अरे अरे समझ जाए करो यार, म्यूजिकल ब्रेक के साथ साथ कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो जाता है श्रोताओं।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट, और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यूं गया और यूं आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोब राधा कृष्ण शर्मा, जिला जयपुर राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराब मेला, हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था। प्रधानमंत्री किसान जो योजना बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447।

हाय हाय, बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि आप सबकी जो दुआ है वो जरूर पूरा होए। हर किसी की कोई ना कोई सपना जरूर होता है, मुझे लगता है कि वो पूरा होना बहुत जरूरी है। और भगवान भले ही परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा भी उन्हीं के लेते हैं, उनको पता है कि इस परीक्षा में ये पास हो जाएगा, तो भगवान भी परीक्षा उन्हीं का लेते हैं। और परीक्षा के बाद वो देते भी उतना ही डबल है। वो परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि जिंदगी में आपको सीख लेना बहुत जरूरी है। हम एक्चुअल में कहते रहते हैं ना कि ये मेरा वो मेरा, लेकिन जब वो परीक्षा वो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने रख देते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे अपने कौन होते हैं। और उनसे बस यही हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि और वो भी ये सिखाते कि अपने बलबूते पर करो जो काम करते हो। क्योंकि देखिए, आप आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं, तो किसी का सहारा क्यों ढूंढना। आप खुद ऐसे काबिल बनिए कि खुद आप आगे बढ़े और हर काम आप अपने दम पर करें। दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:25 हो चुके श्रोताओं, और तारीख यानी कि 25 अगस्त। और आई नो कि आप सभी ऑफिस से निकल गए हैं, और भैया कल छुट्टी भी है, तो ऑफिस से यानी कि अपना चार्जर लैपटॉप जो भी आपके जरूरतमंद चीजें हैं जो हम की ऑफिस में रख देते कि यार कल फिर तो ऑफिस आना है, यहीं से ये चीजें ले लेंगे। तो कल ऑफिस देखिए छुट्टी है, सरकारी दफ्तरें भी छुट्टी है, कल स्कूल की भी छुट्टियां हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपनी जरूरतमंद चीजें अपने साथ रखें। और इस बरसात के मौसम में यानी कि जो मेडिसिन आप डेली लेते हैं जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं, वो भी अपने साथ इस टाइम मानसून के महीने में जरूर रखिए। और साथ ही साथ गमलों की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम मलेरिया डेंगू के जो बीमारी हैं वो जो सिम्टम्स है बहुत जल्दी दिखने को मिल जाते हैं। हम एक्चुअल में यही कहते हैं कि जो मच्छर है वो गंदगी में पनपता है और वहीं से बीमारियां फैलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मच्छर है ना वो सिर्फ गंदगी में नहीं बल्कि साफ पानी में भी पनपती है। तो पानी भी आपने ढककर रखना है, और ऑफिस से निकल चुके तो वेल डन, बस आपने हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना है। ये लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है, आप सेफ रहेंगे अगर सीट बेल्ट और हेलमेट लगाते हैं। ये नहीं कि भैया बरसात के मौसम में यानी कि खाकी कलर में तो हमारे मामा दिखेंगे नहीं, तो क्या ही करें, हम नहीं पहनते हैं। देखिए एक गाना है ना, मेरा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो उसमें उनका कोई घाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका घाटा है, क्योंकि आप साफ साफ कैमरे के निगरानी में रहते हो और कुछ नहीं पता कब आपके पॉकेट मनी से पैसे निकल जाए, आपको भी नहीं पता चलता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं पीएससी की तरफ से अगर आप आएंगे तो वहां पर आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलने वाला है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की तरफ से जहां से मैं अभी जस्ट यानी कि 5 बजे से पहले ही आई हूं, बरसात के मौसम में भी बहुत भीड़ है, क्योंकि ऑफिस से निकलने का समय हो जाता है तो भैया भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो लोकेशन जब भी आप ऑफिस से घर के लिए निकले या फिर कहीं भी जाए, आप लोकेशन एक बार जरूर सर्च करिए। जब लोकेशन डालेंगे आपको ग्रीन कलर की पट्टियां दिखती है, वहीं आपको बीच में रेड कलर की पट्टियां दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपको उस रास्ते पर ट्रैफिक जाम आगे चलकर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे श्रोताओं और बात करेंगे। देखिए कुछ चीजें महंगी हो रही है तो वहीं कुछ चीजें सस्ती भी हो रही है, आखिरकार क्या सस्ती हो रही है और क्या महंगी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल स्टे ट्यून रखिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। इवनिंग मस्ती शो में आज रीना के साथ अब कनेक्टेड समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 40 मिनट हो गए और अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, त्योहार आते ही ना जो खाने पीने की चीजें हैं यानी कि धमाकेदार बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि डिनर से लेकर लंच तक हर चीज महंगी हो चुकी है। चीनी चाय पत्ती भी महंगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है और उस इस टाइम हर किसी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स वाला भी गिफ्ट दिया जाता है और यानी कि मिठाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन साथ साथ अब सब्जियों के साथ साथ महंगाई बढ़ चुकी है ड्राई फ्रूट्स की। जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका भी मोल भाव एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो गए हैं। यानी कि एक बात समझ नहीं आती है, आपने देखा भी होगा, जब भी कोई त्योहार आता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, मेवे से लेकर घेवर तक, मिठाइयों तक, और घर में यानी कि सब्जियों से लेकर दाल चीनी हर चीज ताबड़तोड़ वाली महंगी हो जाती है। पनीर दूध दही हर चीज महंगी, यानी कि पता रहता है भैया सरकार को भी कि भाई जो खर्चा नहीं आम दिनों में नहीं कर पाते ना, वो खर्चा यानी कि त्योहार पर जमकर करते हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ा देते हैं। कुछ भी हो, सामान तो हर कोई खरीदेगा, क्योंकि जब मेहमान घर आते हैं तब उनके ये थोड़ी कि हम घर पर देखे चाहे चटनी रोटी खा ले, लेकिन मेहमान को तो नहीं खिला सकते। मेहमान के लिए तो भाई पनीर कुछ ना कुछ इस तरीके से अलग चीजें बनाते हैं ताकि अच्छा लगे, तो महंगाई भी बढ़ जाती है। कितने भी महंगे खरीदना तो है अब, तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ सरकार से विनम्र विनती है कि सैलरी भी बढ़ा दिया जाए। हर कंपनी में एक नोटिस भेजा जाए लिखकर कि भैया सैलरी बढ़ा दो इनकी, महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर लगेगी नहीं कि महंगाई बढ़ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हर किसी के लिए बराबरी हो जाएगा कि चलो सैलरी भी बढ़ रही है महंगाई भी बढ़ रही है तो कोई बात नहीं। अब सोचिए जो इंसान महीने का यानी कि 15,000 कमाता हो, 20,000 कमाता हो और वहीं से वो बाहर सामान लेने जा रहा है तो एक दिन में उसके 5,000 खत्म हो जा रहे हैं, तो वो करेगा तो करेगा कैसे मैनेज, इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा विनम्र विनती है सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाई जाए। और बाकी श्रोताओं आपका क्या राय है आप भी बता सकते हैं इस महंगाई को लेकर। बिल्कुल, हमारा नंबर है 9837896 89। और अगले हमारे पास कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, हम आपके दोस्त हैं जी। बिल्कुल, आप हमारे दोस्त हैं, आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं हमारे दोस्त हैं, बहन है, भाई है, सब कुछ है। गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। बारिश हो रही है, बिल्कुल जी सही कहा आपने, बाहर बारिश हो रही है तो रेनकोट और छाता अपने साथ लेकर रखिए ताकि आप बाहर जाए तो गीले होने से बच सके। और ऐसे में अगर आप अपने साथ छतरी रखते हैं, रेनकोट रखते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन फिलहाल छतरी की बात करूं तो भैया आजकल ऐसी छतरी आ रही है ना कि एक इंसान भी ठीक से बच नहीं पाता है, वो भी गीला हो ही जाता है। पहले की छतरी होती थी, एटलीस्ट दो इंसान तो आराम से सेफ रहते थे, लेकिन अब नहीं है भैया। छोटी छोटी मॉडल जमाने में मॉडल तरीके से छतरी बन रही है जिसमें हम गीले हो जाते हैं, बच नहीं पाते। फिलहाल गाना सुनते हैं, दावते इश्क है। यानी कि मैंने आप सभी को बोला भी है कि देखिए महंगाई बढ़ती रही है और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स है ना वो भी सोने चांदी के भाव तक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ भी जाएंगे, इसीलिए दावत इच्छा है। आज ही आप हमारे घर चटनी रोटी खाएंगे मिलकर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5 यानी कि 56 हो चुके हैं, यानी कि 5:56 हो चुके हैं। और जब मौसम सुहाना हो और गाने भी बारिश वाले हो तो भाई सच बताओ मजा ही आ जाता है, बिल्कुल एक नंबर वाला मजा आ जाता है। साथ ही साथ आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूं, मेरा सवाल है आप सभी से कि आप सबसे ज्यादा यानी कि यूपीआई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर फोन पे गूगल पे, कौन सा एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं? एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इन ऐप में से एक ऐसा ऐप है जिसने 10 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि आज ही के दिन उसकी शुरुआत हुई थी और आज 10 साल पूरे कर चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बेसिस पे उसका यूज होता है। हम जब भी बाहर जाते हैं तो कैश लेकर नहीं जाते, हमेशा फोन पे गूगल पे यूपीआई से पेमेंट करते हैं, है ना? तो आपने बताना है कि आप सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हो पे करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। हमारा नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है श्रोताओं। फिलहाल नेहा कक्कर की आवाज में बहुत ही

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
5: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
4: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। हावड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: क्या बात है श्रोता, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। जुबिन नौटियाल जी की आवाज में आए हाय, इनके जो गाने होते हैं ना भाई साहब, बहुत ही शानदार होते हैं। सच बताऊं तो मेरे फेवरेट वाले सिंगर हैं। आपके अगर फेवरेट वाले सिंगर है तो बिल्कुल क्या करना है आपने, मैसेज करके हमें बताना है, तभी पता चलेगा जी। नंबर है 9823789686 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं जी। हाँ जी, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:12 हो चुके हैं और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है श्रोताओं इवनिंग मस्ती शो में। और अब हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। देखिए, जब भी हम बाहर जाते हैं, चाहे ई रिक्शा की बात करो, हर कोई भी हो, दुकान पर ही जाते हैं, चाय पीने जाते, तो बस सवाल मन में एक ही आता है, क्योंकि छुट्टे तो हम रखते नहीं है, कैश रखते नहीं है, बस भैया ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा क्या। अरे भैया, ई रिक्शा वाले से भी पूछते रह जाते, इससे चक्कर में हम लेट भी हो जाते हैं कि भैया नहीं, मेरे पास कैश तो नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप लेते हो तो बताओ, इस चक्कर में हम लेट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, और बस पहले टाइम लगता था भैया पैसे ट्रांसफर करने में, अब डिजिटल जमाना हो गया है, इसमें टाइम नहीं लगता, बस क्यूआर कोड हमने स्कैन करा, पैसे पेमेंट हो जाते सेकंडों के अंदर। और क्या आपको पता है, यूपीआई अब सिर्फ भारत में और भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यूपीआई 11 विदेशों में भी चलाया जाता है, जिसमें से है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका और कतर, कंबोडिया, मालदीव, ये सब विदेशी देश हमारे साथ यानी कि यूपीआई यूज करते हैं।
1: सारेगामा कार।
0: कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब पेमेंट करने जाते हैं और जब नेटवर्क इश्यू होता है तो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, फिर एक ही दिमाग में ख्याल आता है कि भैया मैंने सामान तो ले लिया है, आखिरकार मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा। और साथ ही साथ बहुत देशों में भी उपलब्ध है यानी कि यूपीआई, और इसका इस्तेमाल अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो भारत में यानी कि, और ये यूपीआई की शुरुआत यानी कि आज ही के दिन 25 अगस्त 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत में जुलाई 2026 में यूपीआई से करीब 2,366 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब यूपीआई का यूज बहुत ज्यादा इस टाइम किया जाता है, यानी हर दिन आमतौर पर लगभग 66 करोड़ बार लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए हम खुद कितनी बार यूज करते हैं, जितनी बार भी आप बाहर सामान लेने जाते हैं, आपके पास कैश ना हो तो दिन में मुझे लगता है कि 5-6 बार तो आप ही यूज कर लेते हैं यूपीआई का। यानी कि यूपीआई अब हमारे जिंदगी में ऐसा एक अहम हिस्सा बन चुका है ना, जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। क्योंकि जब कोई कैश रखता था पहले तो वो गिर जाते थे, तो समझ नहीं आता कि हमारा कैश कहाँ गिरा है, लेकिन अब फोन में होते हैं, गिरते भी नहीं है, उस सेफ रहते हैं, और साथ ही साथ हम पेमेंट आसानी से कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लालच में आकर ना कुछ ऐसे QR कोड पर स्कैन कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे पैसे खुद ही कट जाते हैं और हमें भी नहीं पता चलता कि आखिरकार ये पैसे क्यों कटे हैं। तो आप UPI से पेमेंट करते हैं तो कुछ सावधानियां हैं, और जरा सोच समझकर देखकर QR पर पेमेंट करिए। QR पर पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका है, जब आप QR पर पेमेंट करेंगे तो साफ नीचे लिखा हुआ आता है कि इतने इतने पेमेंट करने हैं। अगर वो चीजें आपके UPI पर लिखा आ रहा है, QR कोड पर वो लिखा आ रहा है, तो समझ लीजिए वहां धोखाधड़ी है, क्योंकि जब भी आप स्कैन करेंगे QR कोड तो ऐसा कुछ लिखा नहीं आता है, तो जहां पर लिखा आ रहा है तो वहां पर सावधान रहने आपने। और साथ ही साथ कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करेंगे श्रोताओं।
2: तूने पर्दा उठाया।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली इनके परम मित्र हैं। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका इवनिंग मस्ती शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने भी एक से बढ़कर एक है, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी।
2: हमने
0: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं, हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। थैंक यू जी। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, और इनका कहना है कि जुबिन नौटियाल जी की आवाज में जो आपने अभी गाना प्ले किया है बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। और रीना मैम, आपको हम सभी की तरफ से प्यारी प्यारी गुड वाली इवनिंग है जी, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए श्रोता, फिलहाल एक पंजाबी ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे जी, और क्या ही करेंगे बताइए जरा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रेडियो की सुई है ना बिल्कुल नहीं घुमानी है, और यानी कि वॉल्यूम है ना हाई करके रखना है, ताकि जो गाने हैं ना उसका आनंद भी आप तभी से ले पाएंगे, अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, उसके बाद हम लौट कर आते हैं और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:28 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और भैया देखिए, प्याज को लेकर थोड़ी सी राहत तो मिली है, जो कि प्याज पहले अगर कुछ टाइम की बात करूं तो 60 रुपए किलो, 65 रुपए किलो मिल रहा था, वही प्याज यानी कि 35 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि प्याजों में थोड़ी, भैया थोड़ी नहीं, ज्यादा ही सस्ती हो गई है, थोड़ी मतलब राहत मिल चुकी है वही। और देखिए आगे आगे क्या होता है और क्या क्या चीजें महंगी होती है। फिलहाल त्योहार का समय है और त्योहार के समय में हर चीजें महंगी होती ही। और साथ ही साथ यानी कि वेदर की बात करेंगे श्रोताओं, तो कल का यानी कि कल की जो तारीख है 26 अगस्त, और 26 अगस्त को भी यानी कि यूपी के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। यानी कि पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी इलाकों में, यूपी में भी कल बारिश आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आंधी तूफान की बात करूं तो 65 की रफ्तार में हवाएं चलने वाली हैं। तो जब भी आप घर से बाहर जाए तो रेनकोट और छाता अपने साथ जरूर रखिए। और ये मानसून का वेदर है और अपने गमले और कूलर का जो पानी है उसको चेंज करना बिल्कुल ना भूले। और देखिए, जिन्होंने अपना सिलेंडर का EKYC नहीं कराया था भैया, तो उनको अब प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिलेंडर जल्दी से आप बुक नहीं कर पाएंगे और सब्सिडी की तो खैर बात ही छोड़िए। चलिए फिलहाल एक गाना और सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं और करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद हम आप सभी से कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629, विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच श्रोताओं, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। और कड़क सवाल आज का बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कोई बता सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि देखिए खाना हर किसी घर में बनता है। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में ऐसी कौन सी चीज है, कौन से अगर ऐसे मसाले हैं जो आप ना डालें तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आप कितने ही अच्छे तरीके से बना ले, कितने ही प्यार से क्यों ना बना ले, लेकिन एक चीज अगर आप भूल जाते हैं तो सब्जी का टेस्ट है वो अलग ही हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। बस सोच को बताना है आपने। नंबर है 9837896896। आज कोई म्यूजिक नहीं, कोई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे आप सभी से मैंने। बस आप आंसर आसानी से दे पाएंगे कि सब्जी अगर आप बनाते हो तो सब्जी में अगर ऐसे कौन से मसाले हैं जो आप नहीं डालते हो तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल आप सभी के लिए एक और गाना हम प्ले करते हैं जो कि बहुत ही झकास और बहुत ही शानदार वाला गाना है। और भी एक अपडेट लेकर मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि अपडेट का पिटारा होता है रीना के पास जी।

0: हाय हाय, क्या बात है जी। गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। और जैसे कि मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ है जो कि पहले आप टिकटॉक चलाते थे, लेकिन उसी जगह एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ है जिस पर आप आसानी से वीडियो डाल सकते हैं और अपनी रिच बढ़ा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये यूट्यूब से भी आसान है, यानी कि चीन वालों ने फिर से एक ऐप और यानी कि शुरू कर दिया है। कौन सा ऐप है, क्या नाम है उसका बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258।

हेलो जी, गुड वेल इवनिंग है श्रोताओ। एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:49 हो चुके हैं। और आज मैंने आप सभी से कड़क वाला सवाल भी पूछा है कि आखिरकार अगर आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में ऐसे कौन से मसाले हैं जो आप नहीं डालेंगे तो आपको टेस्ट कतई भी नहीं आने वाला है, चाहे कितने भी अच्छे तरीके से आप क्यों ना बना लीजिए। इसी बीच यानी कि बिल्ली बिल्ली ऐप का भाई ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि चीन वालों ने इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब के तरह ही होगा। आप वीडियो डाल सकेंगे। भैया जिनको कंटेंट क्रिएटर का बहुत शौक है, वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है और आगे चलकर आप इसे ग्रो भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो जब ये ऐप लॉन्च होगा तो जब आप इस पे एकदम जब भी, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज नई नई लॉन्च होती है और आप उस पर वीडियो बनाते हैं, अपनी आईडी बनाते हो, तो उसको फॉलोअर्स भी जल्दी बढ़ने की संभावना होती है। तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है जी। फिलहाल जो मैंने आप सभी से पूछा है वो बताइए, क्योंकि अगली बार यानी कि अगला आप सभी के मैसेज की ही बारी है। आज का सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कि सब्जी बनाते तो सब्जी में ऐसे कौन सी मसाले हैं एक जो अगर आप नहीं डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलिए उससे पहले गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे और आप सभी के जो मैसेज आ रहे उनको शामिल करेंगे और लेंगे फिर यहां से जाने की इजाजत। और बाहर का मौसम भी सही है, बढ़िया है। और देखिए मुझे लगता है कि जब बारिश हो ना तो मजेदार वाली बारिश हो जानी चाहिए, क्योंकि बारिश हो के भैया उसके बाद उमस वाली थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है, जिससे बिल्कुल भी मन नहीं करता, बड़ा अजीब हो जाता है। तो थोड़ा जमकर बारिश होनी चाहिए, भगवान जी से यही रिक्वेस्ट है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: नारकली डिस्को चली, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और इसी बीच चार्जरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:57 हो चुके हैं, यानी कि 6:57 हो चुके हैं। और जो मैंने आप सभी से आज का कड़क सवाल पूछा है, बहुत ही आसान वाला कड़क सवाल हमारा ये है कि सब्जी में ऐसे कौन से मसाले हैं जो अगर आप नहीं डालते तो टेस्ट आपको कतई भी नहीं आने वाला है। अब बहुत से ये सोचेंगे कि भाई लड़के तो मोस्टली यही कहेंगे कि हम तो सब्जी बनाते नहीं है तो हमें पता ही नहीं होता, खाते तो जरूर है तो खा के तो बता सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास राइट आंसर आता है यानी कि मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं राइट आंसर के साथ। लेकिन राइट आंसर क्या है, क्या कर रिवील कर दिया जाए आंसर? चलिए, नमक है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने कि सब्जी में चाहे आप कितने भी मसाले डाल लीजिए, कितने भी अच्छे तरीके से बना लीजिए, अगर आप नमक नहीं डालते हैं तो सब्जी में टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। कतई जहर वाला आंसर दिया है आपने। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, लिस्ट बढ़ाती जा रही हैं आप, क्या बात है जी। दोस्त की लिस्ट थोड़ा कम करिए। आपके सवाल का आंसर है वो यानी कि नमक, जिसके बगैर सब्जी बेस्वाद लगती है। बिल्कुल जी, राइट आंसर जी। विकी सागर जी कहते हैं नमक है क्या। अगले मैसेज की बात करो तो रीना जी, हमें सब्जी बनानी नहीं आती है तो हमें पता ही नहीं चला कि कौन से मसाले अगर जो नहीं डालेंगे तो टेस्ट पता नहीं चलेगा। अरे सर, बनाते नहीं लेकिन खाते तो जरूर है। सोचिए अगर सब्जी में नमक ना हो तो क्या आप खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे ना अच्छे से। फिर बोलेंगे अरे नमक नहीं डाला है तुमने, क्या सब्जी बनाया है तुमने, 70 बातें सुनाने लग जाएंगे। और ये कुछ लिखते हैं, जीवन में सुख तो हो मगर शांति ना हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर हम गलती से सुविधाओं को सुख समझ रहे हैं। ओके, कितनी बढ़िया बताया हमने। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ललिता जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद। आज तो सोते रह गए, क्या बात है जी। अभी उठी हो और उठते ही इन्होंने रेडियो ऑन किया है। अरे वारे, क्या बात है, इतना मतलब ये होता है रेडियो से प्यार कि सोते सोते भी रेडियो नजर आए, बस अरे रेडियो सुनना है मुझे। और इनका भी कहना है कि भैया सब्जी में चाहे कितने भी मसाले डालो अगर नमक ना हो तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। स्वाद लीजिए जी। राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुई आप भी।
1: अपनी तो जैसे तैसे।
0: दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं और लेट आंसर मैसेज आपने किया है सर, यानी कि आंसर रिवील होने के बाद, क्या बात है जी। नमक मिर्ची, ओ तेरी की, जो मिर्ची नहीं खाते सर उनके लिए क्या, लेकिन नमक जरूरी होता है।
1: आपका क्या हो?
0: दीपक जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ तो शालिनी जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुई हैं। अरे जी गौरव जी, गौरव भैया जी का मैसेज था भैया, जिन्होंने बोला कि हमें सब्जी नहीं आती है बनानी तो हमें नहीं पता कि सब्जी में टेस्ट क्या होता है, पता करिए सर बहुत जरूरी है। शादी हो गई है इनकी, अब दोबारा शादी करवाएंगे क्या, पता चले घर से बाहर निकलवा रहे आप इनको। चलिए श्रोताओं, मैं यहीं से लेती हूँ जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। 7 बज चुके हैं, न्यूज का टाइम हो गया है और हम कल कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, जो करेंगे जहाँ पर ढेर सारी बातें। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मैं हूं आपके साथ आपकी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है? और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर क्या है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
3: देखिए मैं पहले तो आपकी कम्युनिटी रेडियो 89.6 एफएम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज ये लीगल टॉक जो आपने चलाई है। खास तौर पे जो अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती।

0: होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ, जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
1: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
0: है। जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
1: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है?
0: देखिए, खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं एक सपनों का घर बना रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया है, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
1: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए?
0: देखिए, आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट ले, 2 लाख में प्लॉट ले, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में। तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है, रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
1: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
0: देखिए, वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज्ड बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
1: क्या बात है। क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
0: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है, हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
1: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, जाहिर सी बात है अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है, इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं, बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा और प्रोग्राम जो है ये और खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद आनंद, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि यह माहौल भी है, मौसम भी है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया, श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा।
1: नाम तो कोई नया नहीं है,
0: लेकिन हमारे जो लिस्टर है ना, वो हर बार नए नए होते हैं
1: जी, तो मेरा
0: पता तो होना चाहिए।
1: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है, शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की, कुछ सीखने रहना प्रयास रहता है।
0: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर, हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
1: जी,
0: जिस फील्ड में है यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
0: हाँ।
1: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से, जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है, तो उससे वो बनाता है।
0: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी, ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा। मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
1: ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर
0: हैं। आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब कि, मतलब ऐसे लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ साक्षात, कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। तो चलिए आज आपको बताइए।
1: आनंद जी, आपकी ये जर्रा नवाजी है,
0: ये तो सर
1: ना हम इस काबिल कहां।
0: सर ये तो आपका प्यार है,
1: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है,
0: जी जी,
1: उसमें शब्दों से जुड़ा है,
0: बिल्कुल।
1: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती
0: है। यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए।

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसे लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोताएं हैं, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मरतबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसी तरह से मेहरबान है।
0: मैंने आज आपको बुलाया, आप समझ रहे ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले। मौसम ना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं, और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है, तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मान ही रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है, और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट?
1: बिल्कुल,
0: हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुद हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर की मैं डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है, जो शब्द उतरते हैं
0: ये पुरानी डायरी है, जरा ये बताएं आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है
0: असल से। अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें एक जज्बात होते हैं, राइट? उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई हैं, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद। और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना?
1: जानते बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा उपनाम है, इसी से मेरे रचनाकार पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुनकर आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं, जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफ एयर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुतालिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर,
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।

0: वाह, और हम भी बड़े खुश नसीब है कि आपके साथ बैठे हैं साहब, बहुत ही खूबसूरत।
1: अनवरत सिलसिला चलता रहेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो ये आपको कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये लिखना चाहिए, कलमों से उतारना चाहिए? ये रात में आया या दिन में आया या किसी को देख कर आया, पहले तो आप ये बताइए।
1: जाहिर सी बात है कि
0: भाभी जी रेडियो सुन तो रही होंगी ना पक्का?
1: हाँ,
0: मेरे क्या जरा सोच समझ के पूछ लेते हैं भाई, कैसे ना और रॉन्ग दिशा में सवाल चला जाए, तो इसलिए पूछना जरूरी है। लेकिन
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या बात है कि देखिए, एक रचनाकार किसी का नहीं होता,
0: ये तो बिल्कुल सही,
1: वो सबका होता,
0: सब
1: है,
0: सबका होता है, बिल्कुल
1: ठीक है ना। और ये जो पंक्तियां मेरी है,
0: हाँ जी,
1: जो ऊपर वाले के कर्म से जो उतरी, जो ये एहसास जो जहन में थे, वो जब कागज पर उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे जो भी सुन रहा है वो इसे अपने ही परिवेश में अपने ही तरीके से इसका आस्वादन करे, इसको महसूस करे, इसे फील करे, तब उसका एक मजा अलग होता है और वो गीत सार्थक होता है। जाहिर सी बात है, मौसम है, बरसात है, बरसात का जो मौसम है तो इसमें नायक और नायिकाओं की जो स्थिति होती है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो संयोग या वियोग, या तो मिलन या जुदाई। तो सबका अपना अपना मजा भी है, और ये गीत भी उन्हीं कड़ियों को लेकर के चलता है। आप ये समझिए कि बस ये आगे चलता रहेगा और चीजें खुलती रहेगी।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली इस पूरे में, जो मुझे भी मैंने नोट करी कि जैसे आपने बताया ना कि जो एक रचनाकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है।
1: बिल्कुल,
0: वैसे
1: बिल्कुल
0: ही कोई अनाउंसर है, उद्घोषक है, कोई एक्टर है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। क्योंकि वो कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिख रहा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हर एक सुनने वालों को लगेगा कि वो मेरे लिए है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: वो फील हो, वो मैजिक आपकी उस शब्दों में होना चाहिए, उस रचना में होना चाहिए कि जो उसे पढ़े सुने उसको ऐसा महसूस हो कि तो मेरे लिए लिखा है मनु जी ने, तभी वो सक्सेसफुल भी हो,
1: तभी उसके सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि ये हर कला के क्षेत्र में ऐसा है।
0: जी जी,
1: क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे को किसी कला से किसी हुनर से नवाजता है,
0: जी जी,
1: तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपना अपने लिए नहीं रह जाता।
0: ये बिल्कुल सही बात है,
1: है ना? जैसे कि साहित्य की बात है, आप मुझे याद आता है मेरा नाम जोकर, आपने पिक्चर देखी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी।
1: उसमें जो आदरणीय राज साहब ने, राज कपूर साहब ने जो अभिनय किया था, उस अभिनय में एक आपने देखा होगा कि उनकी अपनी माँ उस समय उस दुनिया में नहीं रही है और उन्हें अगला शो करना है जो पब्लिक के लिए करना है, तो उन्होंने उस अपनी उन भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए जो उनके श्रोता थे, जो उनके दर्शक थे, उसके लिए अपना समर्पित हो करके पूरा अपना प्रोग्राम दिया,
0: प्रोग्राम दिया। ये तो खैर, मैं यहाँ पे तो इस चीज को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी चल रही होती हैं, लेकिन हम सब वो गेट के बाहर ही छोड़ के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल सच है। अभी भी मेरी लाइफ में, मैं हर इंसान अगर जीवन में आया है तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना स्व जेन्युइन है, बहुत नेचुरल सी बात है। इंसान है हम यार, यही तो है नहीं, है ना? हम कंप्यूटर तो है नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सबकी जिंदगी में आती है। लेकिन जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जब हमारे सर पे एक ठेकरा होता है कि भाई उसे अब हमें निभाना है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
1: नहीं सर, आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो AI का आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी इंसानों की तरह सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। वो फील कर रहा है कि वो अपनी बात को उन भावों के साथ रख सके जो उसका ओनर है।
0: लेकिन फिर भी सर, इंसान तो इंसान ही होता है,
1: इंसान तो इंसान है,
0: जिसको ऊपर वाले ने बनाया है
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वो इंसान है, और जिस इंसान ने AI बनाया है, भले वो इंसान का रूप ले ले, लेकिन बनाया तो उसे भी इंसान ही है।
1: जी जी, इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक कहा, यानी कि
0: हाँ,
1: सभी जातियों में सबसे ऊपर बताया गया है उसे।
0: तो बस, तो यही तो हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो मनु जी की और मेरी बातों की जो ये चैन है वो लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा नाम जोकर मूवी का नाम इन्होंने जिक्र किया, उस मूवी के बारे में राज कपूर साहब का जिक्र हुआ, तो उन्हीं की फिल्म का एक बढ़िया सा गाना, कोई गाना जो आपके जहन में हो मेरा नाम जोकर, ठीक है? मनु साहब कह रहे हैं सारे गाने अच्छे हैं, तो उसी फिल्म का एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, और आप भी थोड़ा सा फ्लैश बैक में पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बजे रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 21 की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप आनंद के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम में, मनु जी हमारे साथ हैं और आज की ये जो महफिल है वो और भी खूबसूरत हो रही है सर की बातों से, सर के अल्फाजों से, और कुछ न कुछ हम भी बीच बीच में तड़का लगाते ही रहते हैं तभी माहौल और अच्छा बन जाता है। बड़ी खूबसूरत एक लाइन मेरे जहन में आई तो मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए कि पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पलकों को छूते ही सीधा दिल पे असर होता है।
1: क्या बात है,
0: मतलब मजा आ गया। हालांकि मेरी आवाज में आपको कशिक नहीं महसूस हो रही होगी, फील नहीं हो रही होगी, हमारा जोनर नहीं है, लेकिन मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी और मैं कभी कभी गुलजार साहब को भी पढ़ता रहता हूँ, उनकी भी मुझे बहुत चीजें बहुत प्यारी लगती है
1: और बहुत अच्छा
0: ऐसे, मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें पढ़ने को मिलती है, कई बार गजलों से इतनी अच्छी निकल जाती है पंक्तियां की उन्हें पढ़कर ही मतलब सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हमारे लिए लिखी है सच में। नो डाउट,
1: एक शेर के दो मिसरे मैं आपको, शोख बरसात का मौसम है ये आ भी जाओ,
0: वाह,
1: शोख बरसात का मौसम है ये आ भी जाओ,
0: आ भी जाओ,
1: मेरे जज्बात का मौसम है ये आ भी जाओ।
0: अरे वाह क्या बात है, मेरे जज्बात का मौसम है आ भी जाओ, मजा आ गया, क्या बात है। इस माहौल को जो है ऐसी बरकरार रखेंगे, मैं आप और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, एफ एम मुरादाबाद 89.6 का हमारा ऑफिशियल आईडी है, आप वहां आके फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा शायर है या आप खुद एक अच्छे शायर है, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो ये मंच आपके लिए भी है, आप हमें इंस्टेंट डीएम करें, रजिस्टर कराएं और अगले दिन हो सकता है आप भी हमारे साथ हों स्टूडियो में। फिलहाल मनु जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे ढेर सारी बात कर रहे हैं हम और इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं आपकी बातों से। तो सर अभी हम जो है जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने कुछ अल्फाज सुनाए, कुछ बातें कही, मैं चाहूंगा कि उन्हीं को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
1: हाँ सही कहा आनंद जी, दरअसल ये गीत का एक मुखड़ा चल रहा था
0: जी जी,
1: और गीत का एक अपना जो मजा है वो ये है कि जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए
0: 100%
1: तब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती है, तो फिर हम इस बारिश के गीत में थे, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा कि आपका आदेश है, और आप देखें कि किस किस तरह से, किस मोड़ से चीज कहां पहुंचती है,
0: क्या बात है,
1: और अपने श्रोताओं के लिए भी ये क्यूरियोसिटी हम बना के रखते हैं।
0: आपके पास सब कुछ होता है यहाँ, हर हर मर्ज की दवा है आपके पास।
1: अरे जरा नवाजी
0: ले आते हैं पकड़ के।
1: मैं कंटिन्यू करता हूँ
0: जी।
1: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिस मैंने जिससे प्यार किया।

0: देखें और एहसास करें
1: क्या
0: कि जब बारिश मुसलसल पड़ जाती है
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा कि बच्चों के भी होठ कांपने से लगते हैं। कोई भी बारिश में जब ज्यादा देर तक टिक जाता है तो होठ बस वो कैफियत आप नजर में रखें और ये संतरे का
1: आप लुत्फ उठाएं। आप सोचिए कि आप बारिश में है, इमेजिन करिए खुद को।
0: उसके कांपते लब पे मेरे दिलो जा कुर्बान, भीगती जुल्फ

0: खुश नसीब हूँ। और खुश नसीबी का क्या आलम है
1: जी,
0: देखें अगला अंतरा। वो संग मरमर है, कोहिनूर हीरा है,
1: वाह,
0: उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है।

0: वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। और अब इसका अंतिम अंतरा आ रहा है
1: जी,
0: और लौट के हम फिर वापस अपने इस ध्यान में आ जाते हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल।

0: माइंड
1: ब्लोइंग,
0: क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब मुझे इतना मजा आया है तो सोचिए हमारे सुनने वालों को कितना मजा आएगा। ये तो आपने नो अपने टैलेंट को छुपा के रखा था ना ये गाने वाले को, अब अगली बार हम आपसे पहले गाना ही सुनेंगे। मतलब सच में अमेजिंग यार, इतना बढ़िया आपने गाया। पहले तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है,
1: थोड़ा सा
0: नहीं नहीं सच में यार, मेरे को सुनने में बहुत मजा आया। मुझे पता है हमारे लिसनर को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, इतना अच्छा आपने गाया और इतनी गहराइयों से आपने सुनाया, हमें बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर चल रही थी। आपने गा रहे इमेजिन करना
1: है
0: सच में, लेकिन बहुत
1: हमारे श्रोताओं तक बात ये पहुंच पाई है।
0: जी बिल्कुल,
1: दरअसल क्या है कि इसे तहत में भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो इसका रोमानी अंदाज है, जो फील है वो इन गुनगुनाहट के साथ है।
0: क्या बात है,
1: ये एक अलग बात है कि हम रफी साहब के
0: लेकिन बट सर आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को रखा ना गुनगुनाहट में भी, तो वो एक था उसके अंदर एक चाम किया है, मजा आ रहा है सुनने में। वो वाइब मिल रही थी आपके शब्दों की और आपके गाने की, जो सुर तालमेल थे एकदम बढ़िया वाले थे, तो वो अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: महबूबा और मतलब मैं क्या बताऊँ पहली मोहब्बत ये सब पे बात होती है ज्यादातर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में, हर किसी ने प्यार किया, मैंने नहीं किया शायद, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरी है ये सब समझने के लिए प्यार करना।
1: नहीं नहीं आप चाहें, आप चाहें तो आप चाहें तो छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं है
0: सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप देख रहे हैं दोस्तों,
1: लेकिन
0: सर निशाना कहाँ मार रहे हैं।
1: सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, ये रूह से महसूस करने की चीज होती है। और एक बात और होती है, मैं ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ बता सकता हूँ,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वो बताना चाहता हूँ और ये रखता हूँ कि इश्क नहीं दुनियावी यारो,
0: क्या बात है,
1: इल्हाम ही है रासमिया, रूह से रूहों का रिश्ता है, दिल ने जिसे पिरोया है,
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी कंडीशन में कि जब व्यक्ति दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो उस प्रेम को, उस इश्क को, इस जज्बे को फील करना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, और जो इसे डीपली सेंटीमेंट्स के साथ फील करता है इस रूहानी एहसास को, वो दुनिया उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है।
0: सर बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में, ऐसे सारे लिसनर भी खो गए, मैं भी खो गया हूँ, मुझे जागना पड़ेगा कि मैं रेडियो में बैठा हूँ। तो अभी काम करते हैं कि अच्छे से गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे, क्योंकि दोबारा के लिए भी सर को दोबारा बुलाना है ना, तो पिटारे को थोड़ा संभाल के रखना है, इनके पास बहुत बड़ी पोटली है, तो उस पोटली में से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी रखी जाए, क्यों मनु जी।
1: अरे बस ये आपकी मोहब्बत है जो
0: अभी अभी हम थोड़ा सा
1: और हमें भी उस जिंदगी को, उस पास्ट को जीने के लिए
0: बहुत अच्छी बात है, और
1: मजबूर नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मामले में कि
0: ये शुक्राना जो है एक कप चाय से होगा, ऐसे नहीं होगा, खाली खाली शुक्राने से काम नहीं चलता मनु जी, है ना।
1: क्या बात है, हाँ मौसम भी इजाजत दे रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल आपसे अभी इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन एक गाने की इजाजत जरूर चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फरमा सकते हैं साहब, अपने दिल की बात हम तक रख सकते हैं हमारे मैसेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना प्यारा संदेश, उसको छोड़िए ना हमारे नंबर पे 9837896896 9837896896 पर।

0: मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड को सुनने के बाद आज जितनी खुशी आपको मिल रही है ना, उतनी खुशी सर के बच्चों को भी मिल रही है। अरे वाह पापा, रेडियो पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे हो, कभी इतना हमें नहीं सुनाया आपने। रेडियो पे बैठ के जनता में बहुत गाने सुनाते हो, बच्चों को भी सुनाते हो या नहीं? कुछ ऐसा बढ़िया सा कभी रिक्वेस्ट आती है बच्चों की, पापा आज कुछ सुना दो बढ़िया सा?
1: नहीं नहीं, बच्चे भी पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर होता यही है कि घर की मुर्गी भी दाल बराबर होती है।
0: नहीं, आपने वो बात बिल्कुल सही कही है, मेरे दिल की बात आपने छीन ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर का एक माहौल ऐसा बनता जा रहा होगा ना, कि कहीं ना कहीं बच्चे भी फिर वो ढलते चले जाते हैं, उनको भी वो चीजें पसंद आने लगती है।
1: बच्चों का और हमारी शरीर के हयात का और परिवार में जो भी है सभी का बड़ा सहयोग रहता है।
0: अरे वाह,
1: बड़े प्यार से जो है अपनी जिंदगी चल रही है, ये
0: की हमारी तो शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, आपकी ये जो गाड़ी है वो ऐसी चलती रहे, बस हमारा भी यही आपके लिए कहना है जी। सर तो चलते चलते देखिए, इस घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही और कैसे हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये तो आपकी कह सकते हैं जर्रे नवाजी है जो आपने इतने खूबसूरत तरीके से जो है पेश किया हमारे साथ कार्यक्रम, मजा आ गया। कैसे मतलब टाइम हो गया पता ही नहीं चल रहा है।
1: अरे नहीं यार आनंद जी, एक बात मैं बताऊं कि जब भी श्रोताओं से मिलने का मेरा मौका होता है तो मेरे अंदर भी एक अलग उत्साह आ जाता है।
0: वो तो मैं देखता हूं
1: और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यार आनंद जी, जो तुमने मुझे बुलाया है वो मेरे मन की बात छीन लिए, या तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसा रहता है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: चलिए एक मौजू बदलते हुए एक शेर में आपके
0: मैं जरूर सुनना चाहूंगा, इरशाद स्वागत है।
1: अभी मरासिम की बात चल रही थी, संबंधों की बात चल रही थी, तो मैं दो लाइन रखता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जमाना बहुत बदल रहा है और लोग मोहब्बत को भी उसकी कमी समझ बैठते हैं। तो तमाशा बन के रह जाए मरासिम, तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना न झुकना,
0: वाह
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना,
0: मोहब्बत में इतना ना झुकना, वाह। लेकिन सर मोहब्बत में झुके बिना काम नहीं चलता ना।
1: हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ये इश्क की बाजी है।
0: हाँ।
1: और जो हार जाता है वही जग को जीत देता है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
1: लेकिन यहाँ मैंने अभी जैसे जिक्र किया
0: जी
1: कि जमाना बहुत बदल गया है, लोग आपकी शराफत को अलग तरीके से भी देखने लगते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात।
1: और यकीनन तो है ही है कि जो घटिया लोग होते हैं वो उसका अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
0: सही बात।
1: वो चाहते हैं कि उनके साथ वही ब्रूटल स्वभाव को रखा जाए ताकि वो अपनी औकात समझते में नीचे रहें। लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हमें जो अपनी सादगी है, जो अपनी मासूमियत है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रोताओं के साथ विदा लेते हैं।
0: आपने मनु जी आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी बात भी कह दी जाते जाते हैं। तो बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की वजह से खुद को नहीं बदलना है,
1: बिल्कुल
0: हम है वो हमें रहना
1: डेफिनेटली
0: है ना
1: जी,
0: जो
1: जी।
0: आपकी नेचुरलिटी है, जो आप नेचुरल है, जो आप ओरिजिनल है, उसको ही रखिए। मेरा मानना तो ये है जो जैसा है।
1: अरे हमारे गाली चचा कह गए भाई, बस बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना।
0: वाह,
1: बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना।
0: क्या बात,
1: तो जो इंसानी गुण है, जो अलामत है,
0: हाँ जी,
1: जो उनकी मोहब्बत है, तो
0: बहुत बढ़िया
1: कायम है
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा हमारे साथ बातचीत करके और हमारे श्रोताओं से बात करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आनंद का होल स्क्वायर है ये।
0: अरे वाह,
1: आनंद जी के साथ जो आनंद मिलता है तो मल्टीप्लाइड बाय आनंद इज स्क्वायर ऑफ आनंद।
0: धन्यवाद सर। और हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी जरूर पसंद आ रही होंगी हमारी बातचीत। और बाकी श्रोताओं अब हम लेंगे आपसे जाने की इजाजत, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जाएंगे। जल्द ही मनु सर के साथ वापस जुड़ेंगे कुछ और नई रचनाओं के साथ, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ और नई उनकी प्यारी सी शायरियों के साथ।
1: फिर
0: वो आपके दिल के तरानों को
1: छेड़ेंगे।
0: हाँ जी
1: हमेशा हाजिर हूँ।
0: हाँ
1: जब चाहे।
0: बिल्कुल सर डेफिनेटली, और वैसे भी हमारी मुलाकात तो चलते फिरते कई बार हो ही जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी श्रोताओं आपसे भी हमारा यही कहना है कि अगर आप भी कुछ अच्छा करते हैं तो उसे करते रहिए, सही दिशा में काम करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन पहचान आपको भी मिलेगी। बस वही है कि अपने कर्म को मत छोड़ो, जो आप चाहते हो वो आप करते रहो। बाकी अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी होगी मुलाकात कुछ अच्छे गीतों के साथ। आप जो है आनंद लेते रहिए एफएम मुरादाबाद का। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और मोड पर कुछ और नए साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।